0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: बर्गर कौन खाता है? Have something healthy, salad valid order कर. Burger is no thing to eat for lunch. In fact, burger तो सिर्फ cheat meals में खाना चाहिए. And I'm like, अच्छा, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, अपने शरीर में क्या डालना चाहिए. What I should and should not be eating, thank you very much, but no thanks. मेरी एक recentish date थी जिसमें बंदा मुझसे पहली बार मिला है और I wanted to order a burger, obvio. And he's turning around and saying कि भाई कुछ healthy खा ले, nutritious खा ले, तू मेरी मम्मा है या मेरी date है? And that's when I realized, moral of the story, जब आप किसी भी date पर जाओ, even if it's your 500th date, maybe the best thing to do is not tell the सामने वाला person what to wear, what to eat. अगर मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ कि क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे वोट करना है, तो तुम अपने opinions अपने पास रखो. That's the sacred rule of making relationships work. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है और मेरी तरह आप भी ऐसे निकम्मे बेवकूफ dates पर जाते रहते हो, why don't you share notes with me? और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead and find me on the gram या Facebook. Whatever you do, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Na virbala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
2: आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो.
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं,
2: रहे हैं.
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है.
3: असली
2: नहीं कर रहे हैं.
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो तो कोई बपौती है.
3: बात नहीं, तमीज सीखिए. नहीं,
2: तमीज
3: नहीं,
2: सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Okay.
3: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ऑफिस में आपने अपनी कॉलीग की चेयर जानबूझ के सीटिंग बदल दी सो

0: आ मैं आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड यू नो इट्स टाइम फॉर
1: द सीक्रेट बॉक्स।
0: सो अपना नंबर भेज दो, अपनी सीक्रेट कन्फेशन भेज दो, एंड आई प्रॉमिस मुझे आपको देने के लिए है नॉन जजमेंटल कान मेरी जान एंड ऑफ कोर्स अ होल लॉट ऑफ रोशिफिकेशन। मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर। हेलो मिस्ट्री कॉलर।
2: हाय रोशी,
0: कैसे हो आप?
2: मैं बहुत बढ़िया।
0: ये जो आप इतने स्वीट बॉय साउंड कर रहे हो ना, आपका इंस्टा कन्फेशन पढ़ के मुझे ऑब्वियस समझ में आ गया कि आप इतने स्वीट बॉय हो नहीं वैसे, है ना? मतलब यू हैव लाइक अ सर्टेन डिग्री ऑफ खुराफात अबाउट यू, करेक्ट, राइट और रॉन्ग?
2: या एग्जैक्टली।
0: क्या कर रहा है जिंदगी में
2: अभी? ना मैं बहुत सारी मतलब चीजें इधर उधर सीख रहा था, तो मैंने गर्लफ्रेंड को ना खुश रखने का वो देखा, ठीक। तो उसमें क्या हुआ, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो हमेशा मतलब मेरे से हमेशा जो मेरी बंदी है ना, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। हालांकि ऐसे टेंटम्स नहीं होते थे उसके, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेजान थी, सूखी पड़ी थी।
0: पर आपके पास तो गर्लफ्रेंड है, तो सूखी क्यों पड़ी थी आपकी जिंदगी?
2: नहीं, उसने होता है ना, अपने से प्रॉमिस कर रखा था कि शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे।
0: अच्छा ठीक है।
2: 5 साल, क्योंकि पहले तो मैं कंधा रहा उसका, ठीक है, तो कंधा बन के मैंने उसका बहुत साथ दिया, बहुत ये सब किया। उसके बाद जाकर वो आई, तो उसने एक ऐसा अपने से प्रॉमिस कर लिया था कि नहीं यार, हमें ना नहीं करना शादी से पहले। तो आपको पता है ना, जब लड़के बैठते हैं, आप लोग भी जब बैठते होंगे, लड़कियां भी बैठती होंगी, तो एक ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड था ना, उसे सब कुछ मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई कैसे? तो कहता है यार नीड्स पूरी करनी पड़ती है। अब आपको समझ आ रहा होगा, मैं यहाँ पर दूसरे रूम में हूँ, मेरे माँ बाप बाहर बैठे हैं, तो मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो भाई मतलब इतने डोमिनेटिंग पेरेंट्स के साथ तुम कहाँ से पैसा खर्च करोगे ज्यादा? तो उसे एक बैग चाहिए था, ठीक। तो मैंने जुगाड़ लगाया और मैंने ना उसे सेकंड कॉपी लाकर दे दी उस चीज की, और उसे लग रहा है कि मैंने उसे बहुत महंगा वाला जो उसे पसंद था वो वाला बैग दिया।
0: तो आपने ओरिजिनल नहीं लेके दिया, फेक बैग लेके दिया उसको, और आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल है?
2: पर रोशी मुझे रियल मिलने लग गया। फेक बैग के साथ रियल मिलना, सारे उसके व्रत सारे उसके प्रॉमिसेस टूट चुके हैं अपने से। और मैं बता रहा हूँ, वीक में 2 से 3 बार मिल रहा है हम लोगों को।
0: मुझे ना इतने डिटेल्स चाहिए नहीं थे, मतलब मैं पहली बार में ही समझ गई थी कि खुश हो गए हो आप यार, मतलब और क्या डिटेल्स दोगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे रोशिफिकेशन की कोई वैल्यू आपके यूनिवर्स में है ना, बिकॉज अभी तो आपके साथ जो मजे हो रहे हैं उसमें रोशिफिकेशन की क्या ही जगह है, बट फिर भी कर दूं।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: मतलब जो आ रहा है आने दो, व्हाटएवर इज कमिंग,
2: कुछ रोक रहा नहीं है। बहुत दिनों बाद यहाँ पर हरियाली।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो यार।
3: You've been roshified.
0: It was very nice talking to you, mystery caller. यार इन mystery caller से मैं और बात नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे 2 मिनट में अपनी favorite position भी बता देंगे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, feel free to hit me up insta पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, I also get entertained on the side, so hit me up, do whatever you have to do, पर कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
4: निकला

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: I met this guy on a dating app. मुझे ऐसा लगा कि वो मुझ में interested है. मैं definitely उसमें interested हूँ. लेकिन the problem is कि अभी हमारी conversation सिर्फ text पर चल रही है. हम एक बार मिले हैं. Coffee date was amazing. लेकिन अगर मैं उसे एक दिन में 10 text भेजती हूँ, तो मुझे वापस सिर्फ 3 भेजता है और उनकी duration is super unpredictable. What am I supposed to make of this?
0: रोशी के DM से.
2: Wow, ये text आया है सुनिधि का and this is a bit confusing, right? क्योंकि वो आपके साथ hang कर रहा है, although उसने एक ही बार hang किया है, but वो आपको text कर रहा है, but ना frequency match हो पा रही है, ना timing match हो पा रही है. Clearly this guy likes you, sure, but ये आप में कितना interested है, वो थोड़ा सा sus है, क्योंकि अगर वो genuinely आप में hardcore interested होता, like you are in him, तो ना कि सिर्फ वो आपको उसी वक्त text कर देता, अगर busy होता तो 5-10 मिनट में text करता, but he would have matched your text for text. I am not saying 10 text का जवाब वो 10 टेक्स्ट से ही देगा, लेकिन कम से कम 10 टेक्स्ट का जवाब वो 6-8 टेक्स्ट में तो दे सकता है. व्हाट इज दिस 3 वर्सेस 10 टेक्स्ट का प्रोपोर्शन? दिस डजंट साउंड ऑल राइट टू मी, बट ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है फॉर मी टू टेल यू टू मूव ऑन, बिकॉज ये कमिटमेंट फोबिक बॉर्डर लाइन साउंड कर रहा है. यू जस्ट हैव टू गिव हिम सम मोर ऑफ योर टाइम स्वीट हार्ट टू फिगर आउट कि ये into you है भी या नहीं. And I would recommend another 3 weeks. 3 weeks is a really solid time to figure out if a guy wants to be with you or not. और अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा he's wasting your time, then he's doing just that, wasting your time. And be extremely respectful of your time, क्योंकि अगर आप अपना वक्त respect नहीं करोगे, तो आपका वक्त कोई और respect नहीं करेगा. On that note, अगर आपकी भी जिंदगी में सुनिधि की तरह कोई भी प्रॉब्लम है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead and do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: I will not lie, ये मैंने Instagram पर पढ़ा था, but I think it applies to you and I both. पांच reasons कि आप एक मोमो हो. सबसे पहले, you hide your feelings from everyone. Number two, आप pretend करते हो that you're tough on the outside, लेकिन अंदर से you're such a softie. Number three, you have multiple personalities. Number four, आप steaming hot इंसान हो. And number five, everybody loves you. I have realized that actually मैं इंसान कम और मोमो ज्यादा हूँ. अगर आपको भी ऐसा ही लगता है that you're a bit of a momo, then why don't you get your momo here and we can have a momo to momo conversation. और वो करने के लिए you can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और अगर आपने momo word correctly नहीं सुना then you're also a little bit pervy. On that note, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23
4: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: चलाया था 2200 रूपए का।
4: नहीं नहीं वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात चिल्ला के भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या कर रहा
4: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
5: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपको किताबें इस हद तक पसंद है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती तो आप एक लाइब्रेरी को डेट कर लेते। आपको खाना इतना पसंद है दैट इंस्टेड ऑफ योर बॉयफ्रेंड आप इजीली आलू के पराठे को अपना बॉयफ्रेंड बना लेते। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आप किसी को डेट कर रहे हो और जो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन इंड्यूसिंग है आपके पार्टनर के लिए ना हो तो रिलेशनशिप में एग्जैक्टली क्या होता है, दिस इज़ व्हाट वी गोइंग टू फिगर आउट। बिकॉज रितेश ने मुझे अपना बहुत ही ज़िंदगी का भसड़ भरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम लिखकर भेजा है एंड आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम। अगर रितेश की तरह आपकी भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड मेरे साथ लाइन पर रितेश है। हाय रितु।
3: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
3: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आप रितेश देशमुख तो नहीं हो आई एम गेसिंग?
3: नहीं, आई एम नॉट रितेश देशमुख, बट या मेरे अंदर कुछ ट्रेट्स हैं, आर्टिस्ट बनना तो हूँ मैं।
2: अच्छा, आर्टिस्ट बनने हो आप, तो किस तरह के आर्टिस्ट? डू यू लाइक एक्टिंग, डू यू लाइक सिंगिंग?
3: Oh no, I'm into music. I'm totally into music.
2: Okay.
3: Surreal artist.
2: हमें कैसे पता कि आप सुरीले आर्टिस्ट हो? जरा एक लाइन गा के सुनाना किसी भी अपने फेवरेट
3: गाने। कौन सा गाना रोशी, आपका फेवरेट गाना कौन सा? इसके लिए तो मैं इंतजार कर रहा था।
2: दिस इज सो क्यूट। मुझे अरिजीत सिंह के सारे गाने पसंद है। सो इफ यू वर टू लाइक वू मी,
3: दिस वन इज फॉर यू रोशी।

0: वो मैंने ना एट द स्टार्ट ऑफ द शो एक्सप्लोजिव वर्ड यूज किया था, बट अभी मुझे पता चला कि रियल एक्सप्लोजिव क्या होता है. यू आर यू नो व्हाट आई मीन, आई डोंट यूज, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, बट
1: यू बीन रोशिफाइड.
2: ओह माय गॉड, ऑलरेडी.
0: आई डोंट नो हाउ एल्स टू थैंक यू. ओके, सो रितु, यू आर सच एन इनक्रेडिबल सिंगर. ऐसे हसीन आदमी की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
2: यही, ऐसे हसीन आदमी की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम.

0: लाइफ में जब स्पेशली जो ये गर्लफ्रेंड वाला चक्कर है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है.
1: दैट्स ट्रू.
0: तो एक तो देखो मैं आपको अच्छे लगे मेरे सुर शायद
1: मतलब
0: मैं
1: हां आई लव्ड इट.
0: आई हैव जस्ट बीन सिंगिंग लाइक यू नो बीन अ सिंगर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो सुरीले सुरीले गाने सुनने एंड काफी आर्टिस्ट मुझे हर तरह के आर्टिस्ट सुनना पसंद है. द ओनली थिंग इज दैट माय गर्ल शी इज ऑब्सेस्ड विद हिमेश रेशमिया. लाइक आई डोंट गेट इट. I literally don't get it. Like, why are you obsessed with Himesh Rashmiya? I was like, okay, good, good. You like him. Good, good. Listen to him. But then, do not expect me to sing Himesh Rashmiya, no? So she would be like, yaar, ye to achha tha. But sing na. Dil ki surkadeep. I said, no, don't.
1: Let's not do that. वो गाना कह रही हो वो आपको ये नहीं कहती है when you guys are getting like you know hot and naughty कि वो गा दे तन तन तन तन तन
0: please don't अभी तक बस ये moment नहीं आया कहीं कहीं तंदूरी nights
1: ना हो जाए वो. तो क्या आपके आपके relationship की तंदूरी nights के बीच में हिमेश रेशमिया का बेसरा
0: है? रेशमिया है exactly. और ये ना मतलब मेरे को लगा पहले ठीक है यार चलो होता है it's just normal and all but obsession जैसे बढ़ता गया ना I was listening to a lot of India artists हाँ. and this woman was like यार इसमें वो बात नहीं I love you सयून मैं कहा ये क्या है मैं कहा ये मेरे घर में इमेज जमिया कहाँ से आ गई है. So you know
1: अच्छा तो ये प्रॉब्लम है
0: बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. सो आई वांट कि यार ठीक है इमेज जमिया पसंद है आपको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट डू लिसन टू अदर आर्टिस्ट नो योर गाय शी वुडंट लेट मी सिंग एनी ऑफ माय ओरिजिनल्स शी बी लाइक यू सिंग हिमेश नो
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी है लाइक मेरे को समझ में आता अगर कोई कहता कि अरिजीत सिंह गाले बट हिमेश रेशमिया लाइक आपकी
0: मेरा जॉनर नहीं है आई एम नॉट सेइंग कि
1: मेरे पास इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. बंदी को हिमेश पसंद है वो चाहती है उसका बंदा उसके लिए हिमेश का है सक इट अप एंड यू विल हैव टू सिंग व्हाट शी वांट्स राइट. क्योंकि अगर आपका बाकी का रिलेशनशिप ऑसम है तो ये तो आप कर सकते हो राइट.
0: या सो मतलब यू वांट मी टू एक्चुअली गो अहेड एंड सिंग तंदूरी नाइट्स व्हेन वी आर हॉट एंड
1: यार अगर देखो तन तन तन तन तंदूरी नाइट्स कह के लाइक जिंदगी भर के मजे मिल सकते तो तू क्यों नहीं गाएगा. और बट मेरे दिमाग में ना एक और चीज आ रही है पता है रितेश और वो ये है कि अगर तूने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये हिमेश रेशमिया वाला फेज निकाल दिया ना तो उसके बाद जिंदगी तुम्हारे रास्ते में कोई भी ऐसे लाइक भसड़ से बड़ी भसड़ ले आएगी यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. बिकॉज एक सिंगर को हिमेश रेशमिया गाना पड़े डेली बेसिस पर उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है.
0: एग्जैक्टली ये बात से मैं अग्री कर रहा हूँ कि तेरी मेरी कहानी
1: एग्जैक्टली
0: आगे बढ़ जाएगी शायद.
1: ये हिमेश के स्टेज के बाद तो तुम कुछ भी सरवाइव कर सकते हो यार.
0: ठीक है तो आज से हिमेश रेशमिया के गाने रोज मॉर्निंग इवनिंग नाइट हिमेश रेशमिया जिंदाबाद.
1: सो हिमेश रेशमिया कैन थैंक मी फॉर इट ही कैन सेंड मी शुगर फ्री चॉकलेट्स योर गर्लफ्रेंड कैन सेंड मी शुगर फ्री चॉकलेट्स. आपकी भी जिंदगी में अगर ऐसी कोई दुविधा है व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट.

0: करनी
1: है। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

पाता है, ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

मेरी दादी ना बचपन में मुझे एक बहुत अच्छी सेइंग सुनाती थी पंजाबी में, सोने नु सब कुछ सोना दिसता। मतलब कि जो इंसान सुंदर होता है ना, उसे सब कुछ सुंदर दिखता है। और एक रिलेशनशिप में भी इट्स समथिंग दैट आई ट्राई टू डेवलप, ये एक छोटी सी सेइंग को दिमाग में रख के, कि जब भी मैं अपने पार्टनर को देखूँ ना, मैं उसमें अच्छी क्वालिटीज़ देखने की कोशिश करूँ, स्पेशली जब झगड़ा हो रहा होता है। बिकॉज जब हम किसी से झगड़ा कर रहे होते हैं तो फर्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू डू इज़ टेल आर सेल्व्स एंड दैट पर्सन कि वो कितना ख़राब इंसान है। बट आई रियलाइज कि अगर आप अंदर से अपने दिल को सुंदर रखो, साफ रखो ना, देन आसपास जो भी चीज़ें होती है वो सुंदर और साफ होने लग जाती हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। सिर्फ लवर्स के साथ नहीं, अपने डैड, अपने ब्रदर, अपनी मदर, सबके साथ इसे ट्राई करके देखो। बड़ी मम्मी की छोटी सी सेइंग ने मेरी बड़ी सी जिंदगी को काफ़ी प्रिटी बना दिया है, एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू एज वेल। बड़ी मम्मी तो अब नहीं रही, लेकिन उन्हें थैंक यू मैं कैसे ना कैसे अपने प्रेस के थ्रू आपका भेज दूंगी। यू कैन गेट इन टच विद मी इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है RoCHIE, एंड इट इज ट्रू, सोने नु सब कुछ सोना दिसदा, ताही ते तुसी अन्ने सोने हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू आर रियली ब्यूटीफुल, तो कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज बातों बातों में बात निकली तो ऑफिस में बहुत सारे लोगों को ये पता चला दैट आई एक्चुअली मेडिटेट एंड आई बीन डूइंग दैट फॉर 10 years. एंड किसी बंदे ने मुझे देखकर बोला एंड इट हैड टू बी अ गाय. ही वाज लाइक, रोशी तुझे देखकर लगता तो नहीं है कि तू मेडिटेट करती होगी. एंड आई वाज लाइक, तुझे देखकर लगता नहीं है कि तेरे अंदर दिमाग होगा. बट यू ऑल्सो सरप्राइज मी ओकेजनली. बट ट्रस्ट मी, आई डिडंट गेट ऑफेंडेड कि अ लॉट ऑफ पीपल वर टेकन बाय सरप्राइज कि मैं मेडिटेट करती होंगी, वो भी दिन में 2 बार. सिंपली बिकॉज मैं एक तरह के कपड़े पहनती हूँ, मैं एक तरह की बातें करती हूँ, एंड इट्स सो कन्वीनियंट फॉर अस टू काइंड ऑफ स्लॉट द अदर पर्सन. या कि अगर इस इंसान ने छोटी स्कर्ट पहनी है और अगर ये इंसान इतना ऊंचा बोलता है और इतना एक्साइटेबल रहता है, इस इंसान में स्टिलनेस की क्या ही वैल्यू होगी. बट दैट सेट मी थिंकिंग कि जब हम किसी को रिलेशनशिप के नज़रिए से मिलने जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इट कुड बी अ ब्लाइंड डेट, इट कुड बी समवन वी मीट ऑन एन ऐप, इट कुड बी समबडी वी मीट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग मैरिड, हम उन्हें देखते ही पहले 5-10 मिनट में उनके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं और उसके बाद ज़िंदगी भर हम उस ओपिनियन पर ऑपरेट करते हैं कि जब हम पहली बार उस इंसान को मिले थे तब हमने उसके बारे में क्या सोचा था. बट इंग्लिश में कहावत है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. आई गेस दैट कहावत एक्चुअली होल्ड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग. मुझे देखो, मुझे देखकर लगता है कि मैं मेडिटेट करती हूँ, बट आई कैन टीच यू कपल ऑफ थिंग्स अबाउट मेडिटेशन एंड लव. और अगर आप दोनों के बारे में जानना चाहते हो, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. तो सोच क्या रहे हो, हिट मी अप, डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga.
0: Mirci, burga.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: मिलता है,
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी? और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मान जाते हैं, आज चमकदार मान जाते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना। सर मनीष, सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com. How dare you call me?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ऑफिस में आपने अपनी कॉलीग की चेयर जानबूझ के सीटिंग बदल दी सो दैट शी कैन सिट नेक्स्ट टू यू सो दैट आप सारा दिन उसे ताड़ते रहो. ऐसी गंदी हरकतें करते हो आपको शर्म तो नहीं आती होगी? और आती है एंड यू नीड रोशिफिकेशन फॉर इट. यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE एंड यू नो इट्स टाइम फॉर
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: सो अपना नंबर भेज दो, अपनी सीक्रेट कन्फेशन भेज दो एंड आई प्रॉमिस मुझे आपको देने के लिए है नॉन जजमेंटल कान मेरी जान एंड ऑफ कोर्स अ होल लॉट ऑफ रोशिफिकेशन. मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: कैसे हो आप?
4: मैं बहुत बढ़िया.
2: ये जो आप इतने स्वीट बॉय साउंड कर रहे हो ना, आपका इंस्टा कन्फेशन पढ़ के मुझे ऑब्वियस समझ में आ गया कि आप इतने स्वीट बॉय हो नहीं वैसे, है ना? मतलब यू हैव लाइक अ सर्टेन डिग्री ऑफ खुराफात अबाउट यू, करेक्ट? राइट और रॉन्ग?
4: या एग्जैक्टली.
2: क्या कर रहा है जिंदगी में
4: अभी? ना मैं बहुत सारी मतलब चीजें इधर उधर सीख रहा था.
2: हाँ.
4: तो मैंने गर्लफ्रेंड को ना खुश रखने का वो देखा.
2: हाँ.
4: ठीक, तो उसमें क्या हुआ, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो हमेशा मतलब मेरे से हमेशा जो मेरी बंदी है ना, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता. हालांकि ऐसे टेंटम्स नहीं होते थे उसके, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेजान थी, सूखी पड़ी थी.
2: पर आपके पास तो गर्लफ्रेंड है, तो सूखी क्यों पड़ी थी आपकी जिंदगी?
4: नहीं, उसने होता है ना, अपने से प्रॉमिस कर रखा था कि शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे.
2: वाले दोस्त. अच्छा ठीक है.
4: 5 साल, क्योंकि पहले तो मैं कंधा रहा उसका.
2: हाँ.
4: ठीक है. हाँ. तो कंधा बन के मैंने उसका बहुत साथ दिया, बहुत ये सब किया. उसके बाद जाकर वो आई, तो उसने एक ऐसा अपने से प्रॉमिस कर लिया था कि नहीं यार.
2: हाँ.
4: हमें ना नहीं करना शादी से पहले.
2: हाँ.
4: तो आपको पता है ना, जब लड़के बैठते हैं, आप लोग भी जब बैठते हो, लड़कियां भी बैठती होंगी.

0: आपको समझ आ रहा होगा, मैं यहाँ पर दूसरे रूम में हूँ, मेरे माँ बाप बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो भाई मतलब इतने डोमिनेटिंग पेरेंट्स के साथ तुम कहाँ से पैसा खर्च करोगे ज्यादा? तो उसे एक बैग चाहिए था, ठीक? तो मैंने जुगाड़ लगाया और मैंने ना उसे सेकंड कॉपी लाकर दे दी उस चीज की, और उसे लग रहा है कि मैंने उसे बहुत महंगा वाला जो उसे पसंद था वो वाला बैग दिया।
1: तो आपने ओरिजिनल नहीं लेके दिया, फेक बैग लेके दिया उसको, और आप कह रहे हैं कि ओरिजिनल है?
0: पर रोशी मुझे रियल मिलने लग गया, फेक बैग के साथ रियल मिलना, सारे उसके व्रत सारे उसके प्रॉमिसेस टूट चुके हैं अपने से, और मैं बता रहा हूँ वीक में 2 से 3 बार मिल रहे हैं हम लोगों को।
1: मुझे ना इतने डिटेल्स चाहिए नहीं थे, मतलब मैं पहली बार में ही समझ गई थी कि खुश हो गए वहाँ पे, और मतलब और क्या डिटेल्स दोगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे रोशिफिकेशन की कोई वैल्यू आपके यूनिवर्स में है ना, बिकॉज अभी तो आपके साथ जो मजे हो रहे हैं उसमें रोशिफिकेशन की क्या ही जगह है, बट फिर भी कर दूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब जो आ रहा है आने दो, व्हाटएवर इज कमिंग,
0: कुछ रोक रहा नहीं है। बहुत दिनों बाद यहाँ पर हरियाली।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो यार, यू हैव बीन रोशिफाइड। It was very nice talking to you, mystery caller. यार, इन mystery caller से मैं और बात नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे 2 मिनट में अपनी favorite position भी बता देंगे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, I also get entertained on the side, so hit me up, do whatever you have to do, पर कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप किसी से नाराज हो, किसी ने आपका दिल दुखाया है, I don't advise you to forgive them. सबसे पहले जो feelings of anger है ना, उन्हें full force में feel करो. क्योंकि अगर आप उन्हें दबा कर किसी को फॉरगिव कर दोगे, टू फॉरगिव देम, ये फॉरगिवनेस सच में कंप्लीट नहीं है. क्योंकि कहीं ना कहीं इस गुस्से के सीड्स अभी भी आपके अंदर हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी भी यू आर होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट दैट पर्सन. लेकिन जब आप इसे फुल स्ट्रेंथ में फील करते हो ना, देन यू रियलाइज कि यार ये इतना इंटेंस इमोशन है कि मैं इसे पकड़ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ. एंड दैट्स व्हेन यू लेट गो, दैट्स व्हेन यू फॉरगिव, नॉट फॉर द अदर पर्सन बट फॉर योरसेल्फ. क्योंकि आप अपने आप को इस इंटेंस इमोशन से लिबरेट करना चाहते हो. इस फॉरगिवनेस के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचो. कैसा लगा आपको ये मुझे बताने के लिए, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्चि रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू डू दैट, एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidvala murga.
1: Milci, murga. Hello.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23
2: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का।
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए क्रेशन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
2: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दिस इज समथिंग

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब एक लॉयर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस यस यस, वो फिल्म मेकर थे, लेकिन उससे पहले, पार्टीशन से पहले कराची पाकिस्तान में वो एक लॉयर थे। फिर पार्टीशन के बाद बॉम्बे आ गए, वहां से ये फिल्म बनाने की दुकानदारी कैसे शुरू हुई एक बार एक इंटरव्यू में रमेश सिप्पी साहब ने शेयर किया था।
1: वो जब आए यहाँ 47 में तो ऑब्वियसली उन्हें नहीं समझ में आया होगा कि अब क्या किया जाए। सडनली सब कुछ हो गया और आना पड़ा, तो फ्लैट सिस्टम वगैरह शुरू किया था बॉम्बे में, बेच रहे थे तो कुछ फिल्म वालों को बेचा, तो वहां से मुलाकात हुई उनके साथ और उनका शौक तो था ही। उनका कहीं ना कहीं दिल हमेशा करता होगा कि कुछ फिल्मों में कुछ हो जाए, एंड फाइनली कुछ 1951 में देवानंद और निम्मी और श्यामा इन तीन को लेकर एक फिल्म बनाई गई सजा। फर्स्ट फिल्म वॉज सजा, तो ये शुरुआत हुई उनकी और धीरे धीरे वो बढ़ते गए।
0: इसी बात पे हम भी आगे बढ़ते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Hello.
1: Is that Mr. Vipul?
0: Yeah,
1: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
0: बट इसमें करना क्या होगा?
1: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
0: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
0: फाइन।
1: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
0: मिलता है।
1: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
0: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
1: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
0: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
1: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
0: हैव यू गॉन मैड?
1: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
0: क्या बकवास कर रहे हैं?
1: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
0: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके?
1: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
0: हेलो
1: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
0: हाँ, हु आर यू?
1: सर मनीष।
0: हु आर यू?
1: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
0: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
1: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Rani Jeans with Charu, only on

0: रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब पार्टीशन के बाद बॉम्बे आ गए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। पहले उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, फिर फिल्मी लोगों से मिलने जुलने लगे तो फिल्म मेकिंग का काम भी शुरू किया। 50s में रमेश सिप्पी साहब अक्सर फिल्मों के सेट्स पे जाते थे, अपने फादर को मेहनत करते देखते थे और बहुत कुछ सीखते भी थे। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: काफी कुछ उनको करना पड़ा, जब आप सीख भी रहे हैं और नए धंधे में जा भी रहे हैं तो पेनल्टीज भी साथ साथ देनी पड़ती है। खैर आखिर में उनका स्पिरिट कुछ ऐसा रहा कि मैं तो कुछ करके ही दिखाऊंगा। उसी जोश के साथ मेरा भी जोश पैदा हुआ, उनके जोश के साथ मैं भी जोशीला बन गया। बचपन से चाहता था कि मैं भी कुछ करूं। मैं तो स्कूल में पढ़ रहा था तो बाकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन कभी कभी स्टूडियो चला जाता था तो वो वायर्स और लाइट्स के बीच में फंसे हुए इस खूबसूरत और अजीब सी दुनिया में पहुंच गए और अच्छा लगा। ऐसा लगा कि शायद कभी मौका मिले तो हम भी कुछ कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा उस वक्त ध्यान नहीं दिया क्योंकि पढ़ाई करनी थी। लेकिन फिल्मों का शौक पैदा हो गया और फिल्में देखने शुरू की, वहीं से इंस्पिरेशन मिली। उस वक्त स्कूल वगैरह थे नहीं फिल्म एजुकेशन के, फिल्म ही एजुकेशन, उन्हीं से सीखना पड़ता है।
0: और मेरे ख्याल से इसी तरह से सीखना ज्यादा अच्छा रहता है, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस लेते हुए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: आपको पता है फिल्म मेकर रमेश सिप्पी साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर कुछ फिल्मों में काम भी किया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उनके फादर जीपी सिप्पी भी फिल्म मेकर थे ना, तो उनके सेट्स पे ये हंसते खेलते कूदते पहुंच जाते थे और ऐसे ही काम भी कर लिया। अपने इस एक्टिंग स्टंट के बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: 7 बरस की उम्र थी मेरी, शहनशाह फिल्म में मैंने मेन लीड वाले बच्चे का काम किया जब वो छोटे थे। रंजन साहब साउथ के बड़े एक्टर थे उस वक्त, और कामिनी कौशल के साथ एक दो लाइन का सीन था, बस अम्मी अम्मी अम्मी करके वो लिपट जाते हैं। पीरियड ड्रामा था। उसके बाद भी आगे चल के मैंने एक विलन का रोल प्ले किया, जग्गू दादा। ये भाई बहन फिल्म बनी 56 होगा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। टिपिकल जो ट्राइप गंजी गले में रुमाल पान वान चबा के स्ट्रीट के दादा, बच्चों के साथ बदमाशी और उस टाइप का।
0: बस ऐसी बदमाशी करते करते ये लड़का इतना बड़ा फिल्म मेकर बन गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब की स्कूली पढ़ाई के बाद उनके फादर जीपी सिप्पी साहब ने उनको लंदन भेज दिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इनका वहाँ पे दिल ही नहीं लगा, क्योंकि इनका दिल तो फिल्म के सेट्स पे लगा हुआ था ना, जहाँ ये बचपन से जा रहे थे। तो इन्होंने अपने पापा को बोला कि दिल नहीं लग रहा, पापा ने वापस बुला लिया। इस बारे में सुनिए रमेश सिप्पी साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: वहाँ से भी भाग आए तो यहाँ आके कॉलेज भी ज्वाइन किया मैंने, मॉर्निंग क्लासेस सुबह 7 से 10, ऑफिस स्टूडियो जहाँ भी देखते रहे। और वहाँ सिखाई कोई एजुकेशन तो थी नहीं, वही एजुकेशन थी जो देख रहे थे हम सेट्स पे, कैसे क्या कौन क्या कह रहा है, कोई डायलॉग पढ़ रहा है, कोई बता रहा है, कोई रिहर्सल्स चल रहे हैं, ऐसे कुछ। और आगे बढ़ते रहे, मैंने तो वो साधना जी के चप्पल भी उठाए मेरे महबूब के सेट पर। तब मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ असिस्टेंट करने गया था, 17 बरस की उम्र से लेके 25 बरस की, 8 साल काफी काम किया।
0: और इनका इतना काम करना इनके बहुत काम आया, क्योंकि तभी तो लड़के ने एक दिन ऐसा बढ़िया काम किया कि शोले जैसी फिल्म डायरेक्ट कर दी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रमेश सिप्पी साहब ने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में फिल्मों के सेट्स पे जा जाकर फिल्में बनाना सीख लिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बचपन में वो अपने फादर जीपी सिप्पी साहब की फिल्में जो है उनके सेट्स पर चले जाते थे, फिर जब थोड़े बड़े हुए तो उनके दोस्तों और फिल्म मेकर्स के फिल्म के सेट्स पर भी जाते थे। ऐसे एक फिल्म के सेट पर उनको थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी, सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक पहली फिल्म जिसके सेट पे मैं गया था, जौहर महमूद इन गोवा, बहुत बड़ी हिट हो गई, लेकिन 2-3 साल लग गए बनाने में, और उसमें मैं सेट पे धीरे धीरे मेरे कदम इस तरह बढ़ने लगे कि जौहर साहब ने फाइनली कह दिया, यश जौहर साहब वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, तो उनको कह दिया कि भाई ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, तो आई हैड टू कीप क्वाइट, क्योंकि भाई कहते हैं कि कैमरा यहाँ क्यों नहीं लग सकता, आपका काम नहीं है डायरेक्टर या किसी को कहना, वो डायरेक्टर का काम है और कैमरामैन का काम है, आप सुनिए देखिए आगे चल के जब आप बनाएंगे तो की। पर ऐसे ही सीखता आदमी, गलतियां भी करना जरूरी है
0: जी, गलतियां नहीं करते तो फिर ऐसी ऐसी फिल्में कैसे बनाते। अंदाज, सीता और गीता, शोले, शान, शक्ति, सागर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wird bala burga. Milchi, burga.
1: Hallo.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से, बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23।
2: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा हूँ?
2: मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
3: मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
1: लीजिए
2: सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रमेश सिप्पी साहब 21 साल की उम्र में ही एक फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई कैसे ना बनते, उनके पापा फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जीपी सिप्पी साहब। नहीं भाई देखो ऐसा है, रमेश सिप्पी साहब बचपन से फिल्मों के सेट्स पर जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखना शुरू किया, अपने फादर की फिल्में, उनके दोस्तों की फिल्मों के सेट्स पर गए। काफी कुछ सीखने के बाद उन्होंने ये अचीव किया। इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: फिर एक फिल्म हमने प्रोडक्शन वारी शुरू हुई मेरे सनम, आशा पारेख, विश्वजीत के गाने बहुत बड़े हिट हुए थे और अच्छी चली थी फिल्म। बहुत अच्छा वो रहा लर्निंग पीरियड, धीरे धीरे हम हमारी बात सुनने भी लगे लोग। एक तो शायद इसीलिए कि मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कुछ अच्छी बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ये सारे एक्सपीरियंसेस ने हेल्प किया। फिर मैंने जो मेजर फर्स्ट टाइम आई टुक क्रेडिट, आई वाज गिवन द क्रेडिट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन ब्रह्मचारी, उसका फिर आई वाज मच मोर एक्टिव ऑन द सेट्स हेल्पिंग। सेट्स पे भी मैं डिस्कस करने लगा कि अगर ऐसा करें तो, और वो अप्रिशिएट भी हो और वैसे किया भी गया।
0: फिल्म को भी काफी अप्रिशिएट किया गया, ब्रह्मचारी वाज सुपरहिट और इसका ये गाना भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई रमेश सिप्पी साहब बचपन से अपने फादर जीपी सिप्पी साहब की फिल्मों के सेट्स पर हंसते खेलते कूदते रहते थे। स्कूल के बाद इनके फादर ने इनको बिजनेस विजनेस सीखने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी भेजा, लेकिन ये वहाँ से भाग आए क्योंकि इनका दिल तो फिल्म मेकिंग में लगा हुआ था। कई फिल्मों के सेट्स पर फिल्म मेकिंग सीखने के बाद 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी में इनको एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रॉपर क्रेडिट मिला। इस फिल्म के सेट्स पर एक और चीज हुई जिसके बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में रमेश सिप्पी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: ड्यूरिंग ब्रह्मचारी मैंने शम्मी साहब से बात की कि कुछ मैं करना चाहता हूँ, आपकी तरफ से हाँ मिलती है मुझे तो मैं आगे बढ़ूँ, तो ये ऐसी बातें हुई और मैंने उनको थोड़ा सा आइडिया सुनाया जिसमें, लेकिन शम्मी कपूर नाच गाने वाला आदमी और ऐसा मैच्योर रोल, मैंने उनसे कहा आपने काफ़ी किया नहीं है, कुछ थोड़ा हटके कर कोशिश कीजिए, शायद अच्छा लगेगा आपको। कुछ दिनों बाद ठीक है कर लेते हैं, शुरू हो गई, मेरा करियर भी शुरू हो गया।
0: लेकिन एक छोटी सी मुश्किल भी आई, करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

0: रमेश सिप्पी साहब ने एज डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म के लिए जो कहानी चूज की उसको काफी ऑपोजिशन मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1971 की फिल्म अंदाज, जो दो ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने पार्टनर्स को खो दिया है, मतलब एक विडो है एक विडोअर है, दोनों सिंगल पेरेंट्स हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। इस बारे में रमेश सिप्पी साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मैंने जब पहली फिल्म बनाई तो एक रिस्क लेने का विचार किया कि कोई बात नहीं देखते हैं, और पिताजी मेरे जो थे वो बहुत ही बड़े दिल वाले थे और जो मुझे अच्छा लगा वही मुझे करने दिया। उन्होंने कहा जब कुछ फ्रेश चीज करने जा रहे हैं तो ऑपोजिशन तो होगी, लोग इमीजिएटली तो नहीं कन्विंस हो जाएंगे कि भाई आप सही बात कर रहे हैं, नहीं नहीं हीरो हो हीरोइन हो नाच गाने हो ऐसे ही होना चाहिए। उस वक्त चलती थी फिल्में और सही अपनी जगह सब सही है, ऐसी बहुत सी फिल्में उस वक्त चली भी साथ साथ। आई थिंक आई जस्ट मेड अ चॉइस कि ये फिल्म पहली हो तो लोगों को लगेगा एक थोड़ा सा हटके काम करना चाह रहा है ये लड़का।
0: और ये लड़का एक और लड़के को इस फिल्म में गेस्ट रोल करने के लिए लेकर आ गया, वो लड़का जो सुपरस्टार बन चुका था, राजेश खन्ना साहब। और खन्ना साहब ये रोल क्यों ना एक्सेप्ट करते, उन्होंने अपने करियर की जो पहली फिल्म साइन की थी वो रमेश सिप्पी साहब के फादर जीपी सिप्पी साहब की ही फिल्म थी, 1967 की राज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: जिंदगी

पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: क्या बात कर रहे हैं, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। हेमा मालिनी सीता और गीता फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थी। सुनिए इस बारे में डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने एक बार क्या शेयर किया था।
1: सच बात तो ये है कि मुमताज जी को अप्रोच किया लेकिन उस वक्त वो बहुत सी फिल्में कर रही थी तो डेट्स नहीं थी और हम चाहते थे कि बस साल भर में कंप्लीट हो जाए और रिलीज हो जाए। सोचा फिर जिनके साथ काम किया है हेमा जी के साथ उनसे पूछा तो वो थोड़ा सा पहले आप मुझे एक वीडियो का रोल देते हैं फिर आप कहते डबल रोल, तो वो भी दिलीप कुमार ने किया हुआ रोल जो राम और श्याम टाइप का रोल। चैलेंज, शी टुक द चैलेंज एंड डिलीवर्ड।
0: और सीधी साधी नाजुक हेमा मालिनी जी को उन्होंने पंखे पे चढ़ने के लिए कैसे कन्विंस कर लिया था।
2: बहुत सिंपल सी बात है, मैं खुद चढ़ गया उस पे। मैंने पंखे पर चढ़कर उनसे कहा देखिए ये बिल्कुल मजबूत है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा मैंने स्विंग भी कर लिया ताकि उनको लगे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने देखा, काफी देर तक देखती रही कि ये अब गिरेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे जो अजीज भाई थे उन्होंने बड़े मजबूती से वो पंखा फिट कर दिया था, तो जैसे मैं उतरा उन्होंने सांस ली और ये हमारा पहला शॉट था भाई।
0: कभी पंखे पे चढ़ रही थी, कभी रस्सी पे चल रही थी, कभी हवा से बातें कर रही थी। बड़ी मजेदार फिल्म है भाई सीता और गीता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
3: हवा के साथ साथ,
4: अरे रे रे।
3: घटा के संग संग,
4: संभालना।
3: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: Mirchi. Buscaba la, buscaba la, sacaba la. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग.
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
1: हाँ, sure.
2: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी.
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे.
2: सही बात कह रही है. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
1: आप किस से बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
1: हेलो.
2: हाँ बोलिए.
1: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
2: मैं क्या सुधरू यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
1: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं. नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें कर
2: नहीं
1: रहे हैं.
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
1: वो तो कोई बपौती है.
2: तमीज सीखिए.
1: नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है.
2: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
3: Pirani Jeans with Charu, only on Mir.

0: डायरेक्टर शेखर कपूर ने एक बार कहा था कि हिंदी फिल्मों को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक शोले से पहले वाली फिल्में, एक शोले के बाद वाली फिल्में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये विभाजन वाली लैंडमार्क फिल्म शोले बनाने वाले रमेश सिप्पी साहब ने इसके बारे में क्या शेयर किया था कि ये कैसे प्लान हुई थी, सुनिए।
1: 1972 हमने सीता और गीता रिलीज की, काफी सक्सेसफुल रही, और फरवरी मार्च की बात होगी, मुलाकात हुई हमारी सलीम जावेद के साथ ये तय करने के लिए आगे क्या करेगी। एक टू लाइन आइडिया था उनके पास जो हमें पसंद आया, और सिप्पी साहब माय फादर उनको भी पसंद आया। एक और सब्जेक्ट था, काफी कंप्लीट स्क्रिप्ट थी जो मैं चाह रहा था कि हम बनाएं, तब तक शोले की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। मेरे पिताजी ने कहा नहीं, वो हो जाओ ये बनाओ। तो ये उनकी हिम्मत और ताकत थी कि एक इनकम्प्लीट सिर्फ स्टोरी आइडिया और पॉसिबिलिटीज नजर आई उनको, और उन्होंने कहा कि आप लोग इसको परस्यू कीजिए, द रेस्ट इज हिस्ट्री।
0: बताइए, बैठे बैठे इतिहास रच दिया इन्होंने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: हिंदी फिल्मों में वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश कमाल की टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म है 1980 की शान। आई थिंक इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो विलन शाकाल, उसका वो अड्डा, वो पूरा आइलैंड, वो मगरमच्छ, उफ तौबा। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: काफी मुश्किल था वो सेट लगाना। मैं एक्चुअली आर्ट डायरेक्टर को लंदन ले गया था और वहाँ हमने कंसल्ट करके जेम्स बॉन्ड के आर्ट डायरेक्टर से बातें की और उनके चीफ असिस्टेंट जो थे उनको लेकर और मेरे अपने आर्ट डायरेक्टर को मैं वहाँ ले गया। उनसे बैठकर समझकर हमने पूरा सेट डिज़ाइन किया, जिसके वहाँ बड़े बड़े ग्लास बनाए और उस ग्लास के पीछे हम समंदर देख सकते हैं जिसमें शार्क्स और वो क्रोकोडाइल और वो सब नज़र आए। तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, वो लंदन के टेक्निकलर लैब ने किया और पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ने वहाँ किया ताकि वो लगे कि बैठे हैं और पीछे से ये
0: पीछे से शार्क दिख रही है, उधर से क्रोकोडाइल दिख रहा है, क्या बात है। इस फिल्म का म्यूजिक भी क्या बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रमेश सिप्पी साहब ने चाहे बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई हों, लेकिन जो बनाई हैं वो बहुत स्पेशल हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर चाहे वो अंदाज हो, सीता और गीता, शोले तो चलो अलग ही लेवल पे आती हो, उसका तो एक अलग ही स्टेटस है। देन शान, सागर, शक्ति, शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन साहब साथ में, क्या इन दोनों सुपरस्टार्स के साथ रमेश सिप्पी साहब को कुछ मुश्किलें आई, कुछ ईगो क्लैशेस हुए? इस बारे में सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: बिल्कुल सच बात बताऊं मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ये कहानियां गाड़ सकता था तो काफी इंटरेस्टिंग और हो सकता था, लेकिन दोनों ने इतने प्यार से काम किया, इतने रिस्पेक्ट, अमिताभ बच्चन साहब को बहुत रिस्पेक्ट थी दिलीप कुमार साहब के लिए और उनके काम के लिए, और उनको भी बहुत इज्जत थी। एक नया लड़का उभर रहा है, उसके साथ काम करने का शौक भी था, और दोनों ने मिलकर हमें बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि मुझे ज्यादा काम करना ही नहीं पड़ा। अच्छे आर्टिस्ट लेने का फायदा तो है ना, सिर्फ उन्हें इंस्पायर करना जरूरी होता है, और कहीं थोड़ा सा इस तरफ ना चले जाएं, कहीं थोड़ा सा उस तरफ ना चले जाएं, वो संभालना पड़ता है। बाकी और कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने सब कुछ सही कहा, सही किया और हिला दिया लोगों के हृदय को।
0: एक्चुअली काफी अच्छी फिल्म है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिल्क।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's me. Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सूटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करने क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
1: मैं।
2: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Llámala! Murga, murga. La vida para la murga.
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Aló?
4: ¿Aló, Kiran Pal ji se baat kar sakta hu main?
3: Bol raha
4: hu. Kiran Pal ji से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23
4: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का?
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट रहे हो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या कर रहा
4: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपका मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ, 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

Mother.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बांटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बच्चों की बुरी आदतों में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी वॉट अबाउट जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी छोटी बेटी है, वो रात को 1-2 बजे तक जगी रहती है और मैं उसको बोलता हूँ बेटा जल्दी सोया करो अच्छा रहेगा। मैंने उसको एक आध एपिसोड भी सुना है, हम जो रिकॉर्ड कर रहे थे सुबह उठना कितना अच्छा होता है, वो कहती मुझे नींद नहीं आती। मैंने कोशिश की है, मैं जगा रहता हूँ, व्हाट डू यू वांट मी टू स्टे अवेक? तो आई सेड नो आई डोंट वांट यू टू स्टे अवेक, व्हाई डोंट यू ट्राई, आई ट्राइड इट डिडंट वर्क। तो आई सेड ओके ट्राई अगेन। तो आफ्टर पॉइंट टाइम इट सीम्स लाइक आई एम इम्पोजिंग, मैं बहुत उसको परेशान कर रहा हूँ, इरिटेट कर रहा हूँ, उसको नैग कर रहा हूँ, जो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कहीं कहीं कहीं ना कहीं उसको ये नज़र आए कि शायद उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, अच्छे संस्कारों की तरफ वो जाएगी। ऐसे केस में कहाँ करें, क्या करें जब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं नायक करूँ उसको, और वो आज ऐसी स्थिति में जब वो कहती है मुझे नींद नहीं आती, आप मुझे फोर्स करोगे तो नींद नहीं आएगी।
4: यू हैव टू गो स्लो। जब भी हम किसी हैबिट के ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, तो हैबिट का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पहली चीज जो होना चाहिए एजुकेशन। उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, कई बार पेरेंट होते हैं ना वो कहते हैं ऐसे करना है ऐसा नहीं करना है। कई केसेस में ऐसा होता है, सब नहीं, लेकिन हमेशा जो हमारी पेरेंटिंग है ना वो एम्पावर करने की तरफ होनी चाहिए, एजुकेट करने की तरफ होनी चाहिए हर चीज। आज अगर आप उनको जल्दी उठने के लिए कह रहे हैं, जल्दी सोने के लिए कह रहे हैं, क्यों उसको आप कन्विंस करें उनको। एक बार जब वो कन्विंस हो जाते हैं और वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम ट्राई करेंगे, तो उनको भी ये चीज पता होनी चाहिए और आपको भी कि इमीडिएट नहीं होता,
3: नहीं होगा, टाइम लगेगा।
4: कोई भी हैबिट नहीं होती, करने वाले में भी पेशेंस चाहिए
3: और जो कह रहा है उसको भी,
4: जो रिजल्ट देखना चाहता है उसको भी पेशेंस चाहिए, वो भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। समझो वो 2 दिन करते हैं, 3रे दिन नहीं करते हैं, तो हम भी कई बार थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं कि कितनी बार समझाएं, कितनी बार बोले, ये तो समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो समझ भी जाएंगे, देन ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा समय लगता है। वो जो हमारा पेशेंस है और हमारी गुड विशेज है वो उनके लिए पावर बन जाती है। हम कहते नहीं हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नैगिंग कभी नहीं करना चाहिए, रादर आपको स्पेस देकर कम बैक करना चाहिए। आपने आज कोई बात करी, किसी ने एक दिन ट्राई किया, दूसरे दिन ट्राई किया, उनसे नहीं हुआ, अगर वो ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं करना है, स्ट्रांगली भी वो कहते हैं मुझे तो ये नहीं करना है, पर आपको तो फुल फेथ है ना कि ये उनके लिए जरूरी है, आप कन्विंस्ड हैं, वो इमेच्योर हो सकते हैं, आप एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, आप 3-4 दिन का गैप दे दीजिए। Just give some space to that person. वो भी उसमें थोड़ा reflect करते हैं, then come back. And sometimes you might have to come back 3-5 times. It is okay. लेकिन जितनी बार आप come back करेंगे ना, वो थोड़े से changed होंगे, थोड़े से open होंगे। अगर आपकी उसके प्रति जो pure intent है और good wishes है, nagging क्या होता है? उसमें थोड़े सी negative energy होती है। करो ना, अभी करो ना, करना चाहिए ना, आपके भले के लिए ना, मेरा क्या फायदा है इसमें? इसमें आपका ही तो फायदा है, आप मानते नहीं हो। That's the energy.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रैक्शन से अपने बच्चों को कैसे बचाएं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये कई बार होता है ना, कुछ बच्चे इतने स्मार्ट हैं, उनसे आर्ग्यू आप कर ही नहीं सकते क्योंकि हर चीज का हाजिर जवाब है। तो आपने बोला, अब वो इतने स्मार्ट हैं कि वो समझते हैं और बोलते नहीं करना, बट आफ्टर पॉइंट है वो कर भी नहीं रहे। और आपको पता है, जैसे कहा कि हम तो चाहते हैं उनके भले के लिए हो, सिंपल सी चीज है कि भाई रात को मोबाइल फोन रख दो दूर, सो जाओ। इसी वजह से तुम नहीं सो पा रहे हो, लेकिन तुमको लगता है तुम और किसी कारण से नहीं सो पा रहे हो, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो व्हाट यू डू, क्योंकि फोन देने का डिसीजन भी हम ही ने एज पेरेंट्स कहीं सोच विचार करके, सही अच्छा ये बड़ी हो रही है, रिस्पॉन्सिबल है, देना भी पड़ेगा, उसके सेफ्टी के लिए भी है, आपने दिया उसको। रिस्ट्रिक्शन शुरू में हमने रखने की कोशिश की, देन यू रियलाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं, एडुकेशन करना जरूरी है कि भाई उसको समझा दो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। वो सब कर लिया, लेकिन अब वही एक फंदा बनता जा रहा है, तो क्या करेंगे?
4: फंदा टेक्नोलॉजी नहीं है, वो देना ही पड़ेगा, जैसे आपने कहा, चाहे वो उनकी सेफ्टी के लिए है, चाहे वो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। आप नहीं देंगे तो वो कहीं से और उसको अरेंज करके रख लेंगे, क्योंकि एक समय के बाद वो चीज अवॉइड नहीं हो सकती। आई पर्सनली फील व्हेन आई सी आज की जो जनरेशन है, उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, माना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्टिमुलेंट्स बहुत ज्यादा है, तो उतनी उस आत्मा के अंदर शक्ति भी चाहिए। शक्ति नहीं है आपके अंदर, पावर नहीं है कहीं ना बोलने की, सेल्फ कंट्रोल रखने की, चाहे वो साधन भी है, आप उसको यूज करें। टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड, जब मैंने कई बार बात किया कि आप उसके मास्टर बने, इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट, लेकिन आप उसको अपना मास्टर नहीं बनाए। पर उसके लिए अगर ये सारे साइंस हमें दिखाई देते हैं कि आपने एजुकेट किया, वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार है कि आप जो कह रहे हैं वो राइट है, फिर भी अगर वो कर नहीं पाते हैं, विच इज अ साइन कि उनके पास पावर नहीं है ना। इट्स लाइक मुझे किसी ने एजुकेट किया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरी भी दिल हो रही है एक्सरसाइज करने की, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाती रोज। सो इट इज अ साइन कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है डिसिप्लिन्ड होने की, स्केड्यूल पर जाने की, रोज वो चीज करने की। तो फिर आ जाता है विल पावर डेवलप करें। विल पावर ना होने के कारण बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं हम कर नहीं पाते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Recharge Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलबाणिं वाराणसीपुरपतिं।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: विल पावर को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो ऐसे केस में उसको विल उसके विल पावर डेवलप करने के लिए क्या किया जाए?
4: सी, माइंड को अगर आपको जैसे बॉडी को अगर आपको डेवलप करना है, उसकी शक्ति बढ़ानी है, तो आप एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे ही मेडिटेशन वो मन का एक्सरसाइज है। वो कोई चॉइस रह नहीं गया है अभी। उस समय पर चॉइस होता था जब इतना पीयर प्रेशर नहीं था, जब इतने चैलेंजेस नहीं थे, इतने डेडलाइंस टारगेट्स नहीं थे। आप जितना पीछे पीछे जाएंगे ना, अगर लोग नहीं भी करते थे, कोई उनके जीवन में मेडिटेशन नहीं था, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस नहीं थी, तो भी ठीक था। जैसे पहले हम कोई रेगुलरली एक्सरसाइज करते थे, पर हमारी लाइफ ही इतनी एक्टिव थी, हमारा खाना पीना ठीक था, एक्टिविटी लाइफ में इतनी थी, फिजिकल एक्सरसाइजेस थी, घर में भी कोई था तो साधन नहीं थे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर रही होती थी। आप खेतों में काम करते थे, एग्रीकल्चर, मतलब तो नई जरूरत है, आपको सेपरेटली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं भी पड़ती थी। आप नहीं करते थे तो भी आप फिट थे। फिर एक समय आया जब लाइफ थोड़ी सेडेंट्री हो गई। काम तो आप आज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मूवमेंट बंद हो गया, तो आप अलग से भी आप एक्सरसाइज करने चाहते हैं ना। फिर हमें कहते हैं अच्छा कम से कम 10,000 स्टेप्स चलो, 20 मिनट्स तो निकालो। ये ऐसे है, पहले हम नहीं भी करते थे तो चलता था, इट वॉज ओके। हमारे कल्चर में भी कई चीजें होती थी जो हमें थोड़ा सा एम्पावर करती थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत एम्पावर करता है। आप कहेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे एम्पावर कर सकता है? जब आप 6-8 के साथ रहते हैं, आपकी कितनी टॉलरेंस पावर, एडजस्टमेंट पावर, शेयरिंग केयरिंग पावर बढ़ जाती है। आज अगर कोई मेहमान आता है घर में और आप अपने बच्चे को आपका रूम खाली करना है,
3: नहीं, बहुत दिक्कत होती है।
4: बहुत दिक्कत होती है
3: क्योंकि आदत नहीं रही,
4: आदत नहीं है एडजस्ट करने की, अकोमोडेट करने की। और उस समय पर क्या होता था जब आते थे घर में,
3: अरे हम 40-40 लोग एक घर में रहे हैं, हम अपना बेड शेयर कर देते, बाहर गद्दे लगा लेते थे,
4: तो आपकी वो पावर भी तो बढ़ी ना। पता नहीं चलता आपने बाहर गद्दे लगा दिया, आप 10 जने एक साथ सो गए, एक कमरे में सारे कजन सो गए, पर वो एक पावर थी ना टॉलरेट करने की, एडजस्ट करने की, तो अपने आप बिल्ड हो रही थी। आज क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सबके पास अपने रूम है, अपना अपना टीवी है। पहले तो देखो टीवी में भी होता था ना, एक घर का कॉमन टीवी है, तो थोड़ा तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता था, अभी इसका चलेगा, अभी इसका चलेगा। सी, व्हेन यू आर सैक्रिफाइसिंग आउटसाइड, अंदर मसल डेवलप हो रही है ना, विल पावर डेवलप हो रही है। अब जितना लाइफ कंफर्टेबल होती गई, न्यूक्लियर फैमिली है, अपना अपना रूम है, अपना अपना टीवी है, अपना अपना फोन है, तो वो बिल्ड कैसे हो गई शक्ति? फिर जब आप वर्क प्लेस पर जाते हो या लाइफ में आते हो, वहां चॉइस नहीं मिलती। घर में तो आपने चॉइस कर ली, वहां तो चॉइस नहीं मिलती, फिर वहां एडजस्ट नहीं हो पाता, टॉलरेट नहीं हो पाता। सो नाउ इट्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस। आपको ये जरूरी है, ये इनएविटेबल है, चाहे वो घर का बड़ा है, चाहे वो घर के बच्चे हैं। आप जैसे एक्सरसाइज से बॉडी को शक्तिशाली बनाते हैं, ऐसे आप मेडिटेशन से मन को शक्तिशाली बनाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: देर रात तक जागकर पढ़ाई करने के क्या नुकसान होते हैं, आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: यू नो, हम जब ऑल नाइटर के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि वो अच्छी बात नहीं है, तो ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है। जो स्लीप साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा था, मैथ्यू वॉकर, उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसमें ये बोला गया है कि द अबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ दोज हु गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप वर्सेस दोज जिन्होंने ऑल नाइटर पुल किया है, मतलब जो लोगों को अच्छा रेस्ट मिला है, क्वालिटी स्लीप मिली है, वर्सेस दोज जिन्होंने ऑल नाइटर पुट करके पूरा रात काम करके एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, पहली वाली जो ग्रुप थी जिनको रेस्ट मिला, उनका अबिलिटी ऑफ लर्निंग इज 40% हायर। जस्ट इमेजिन, इट्स नॉट 1-2-15-20%। तो अगर आप ऑल नाइटर पुल कर रहे हैं तो ये आप एक्चुअली अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ना आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, ना आपके एग्जाम्स की एबिलिटी अच्छी होगी। रेस्ट बहुत जरूरी है।
5: कभी कभी इन चीजों को भी हम बहुत एंडोर्स कर देते हैं या उसको बहुत उस तरह से देखते हैं कि ये तो सारी रात जाग लेता है, ये तो 12 बजे तक भी प्रोजेक्ट करता है,
4: इसको मानता बताई जाती है,
5: उसको मानता, या आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा वैलिडेशन अगर देंगे तो फिर किसी, कई बार हम ये नहीं देखते कि वो अच्छा है नहीं अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, फिर वो एक हवा में फैलने लग जाता है। फिर आपको लगता है आप भी अगर वो करेंगे ना तो शायद यू विल आल्सो गेट दैट सेम अमाउंट ऑफ वैलिडेशन और अप्रिसिएशन, बिकॉज हम मेजोरिटी में फिट इन होना चाहते हैं।
4: बिल्कुल,
5: वो भी नहीं करना चाहिए। वो भी वंस इन अ वाइल ठीक है, आपका कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, आपके घर में कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी है, आप साल में 10-20-25 दिन भी ऐसे करते हैं, इट इज ओके, और करना भी पड़ता है कभी कभी, दैट इज ओके, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बल्कि एक फिक्स्ड स्लीपिंग और वेकिंग टाइम क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, होना नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे ये एक तरह से नॉर्म है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में हैं तो ज़्यादातर जो इवेंट्स होते हैं उस आप क्योंकि उस बिजनेस में हैं तो रोज़ हर तीसरे दिन चौथे दिन को इवेंट हो रहा है, रात को फैब्रिकेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें तैयार नहीं हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं उसी बिजनेस में उसी लाइन में हूँ तो मैं क्या करूँ?
4: फिर उस लाइन में तो फिर चॉइस नहीं है ना, फिर हमें अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। ये हमेशा होता है। एक है मेजॉरिटी के पास चॉइस होती है,
3: जी
4: मेजॉरिटी के पास चॉइस है, उनको अपने चॉइस यूज करने चाहिए। माइनॉरिटी तो 100% ऐसे होंगे, नाइट शिफ्ट वाले भी होते हैं, इवेंट वाले भी होते हैं। कॉन्सर्ट में हमारे पास एक ग्रुप था जो कॉन्सर्ट में प्ले करते हैं, वो आते ही 4 बजे, तो हम उनको कई बार कहते थे आप मॉर्निंग का मेडिटेशन जो अमृत वेला 4 o'clock होता है, तो वो हंसते थे, कहते कि हम 4 बजे उठे, हम तो 4 बजे सोने जाते हैं तो करके सो जाए क्या, क्योंकि हम कहते थे कोई बात नहीं आप कर सकते हैं तो करके सो जाए, क्योंकि फिर भी वो एनवायरमेंट में प्योरिटी तो है, नहीं कर सकते तो फिर उसमें गिल्ट में नहीं जाए।
3: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जहां तक आपके हाथ में है करो, अगर नहीं है तो गिल्ट में मत जाओ, और जितना हो सके करो, रात को ही कर लो।
4: जो आप कंट्रोल कर सकते हैं करें, जो नहीं कंट्रोल कर सकते उसको उसकी गिल्ट में जाना, उसको ओवरथिंक करना
3: हेल्प नहीं कर रहा,
4: हेल्प नहीं करता। दैट इज योर जॉब। आप जॉब चेंज कर सकते हैं? नहीं। अगर कर सकते हैं
3: कर सकते हो, जरूर करिए,
4: पर इट्स अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, नहीं होती है वो पॉसिबिलिटी कई बार। फिर आप अपने को अडेप्ट करें उसके बाद भी। सी, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, अर्ली टू बेड अर्ली राइज तो है, वो तो फर्स्ट चीज है। अगर आप जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग की प्योरिटी है जो वो तो परफेक्ट साइकिल है। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह से नाइट शिफ्ट आदि में है या किसी इवेंट में जैसे आप कह रहे हैं, तो भी एक फिक्स टाइम पर सोना और एक फिक्स टाइम पर उठना
3: बहुत जरूरी है।
4: हॉलीडे पर भी,
3: हाँ, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है।
4: वीकेंड पर भी,
3: हाँ, बिल्कुल, कुछ
4: वो
3: भी
4: आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारा वो जो सिस्टम है उसको सेट रखता है,
3: ये बहुत जरूरी है। और इससे भी नींद की क्वालिटी जो है वो बेटर होती है, क्योंकि आपके ब्रेन को पता होता है कि रोज 10-10:30 बजे सोते हैं और लेट्स से 6:30-6 बजे उठ जाते हैं। तो आपने सही कहा, वीकेंड पे भी, हॉलीडे पे भी, कुछ भी माहौल हो, वो सेम टाइम पे सोने की कोशिश करें और सेम टाइम पे उठने की कोशिश,
4: आगे पीछे एंजॉय करें। ऐसा नहीं, आप आगे पीछे एंजॉय करें उसको, लेकिन हाँ, स्लीप साइकिल हमारी जितनी फिक्स्ड रहती है उतना हमारी जो मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है दोनों ठीक रहती है।
3: बहुत बढ़िया, आपने इसके पहले,
4: मुझे कई बार लगता है कि इसमें से बहुत सारी बातें हमें पता भी होती है।
3: पता सबको होती है,
4: ऐसा कुछ भी, इनफैक्ट स्लीप और फूड की बातें तो ऐसी हैं जो हमें मेजॉरिटी को पता होती है, पर वो किसी दिन वो आता है कि अच्छा नहीं अब मुझे करना है, तो हमें 1 हफ्ता 10 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी सी द बेनिफिट
3: तब
4: हम मोटिवेटेड होते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते. गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है. ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है. जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं. गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं. आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं. सर्वप्रथम पवित्रीकरण.

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री, सावित्री त्रिपदेक्षरे, अजरे अमरे मातः, त्राहि माम शरणागतम्। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौरमंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिर्फ एक घंटे की नींद कम होने से भी हेल्थ पर कितना असर पड़ता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: थोड़ी देर पहले कहा ना कि कभी कभी हम ये जो नेगेटिव्स हैं इनको हम बहुत बड़ा बनाते हैं, मान बनाते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि एक घंटा नींद से भी कितना फर्क पड़ सकता है, और इसका एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन भी हुआ है। इनफैक्ट साल में दो बार होता है, 70 देशों में होता है, एंड 1.6 बिलियन लोगों से आप कह सकते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट होता है, और उसको कहते हैं डेलाइट सेविंग्स। पहला एक मार्च में होता है और फिर एक पर नवंबर में होता है। मार्च में जो होता है रात को 2 बजे, यूएस में क्या करते हैं वो, यूएस और बाकी जो शहरों में जो देशों में होता है वो एक घंटा कम कर देते हैं। तो अब जब आप सुबह उठेंगे आप एक घंटा कम सोए होंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे सिस्टर श्रेया, दिस इज अ स्टडी दैट हैज बीन डन। वो जो मार्च में एक घंटा कम लोगों को नींद मिलती है, अगले दिन हार्ट अटैक के केसेस 24% इंक्रीज होते हैं अगले ही दिन, और ये 2-3 दिन और चलता है। और ये सेम चीज उन्होंने देखी है नवंबर में, जब एक घंटा ज्यादा मिलता है लोगों को तो हार्ट अटैक के केसेस 21% कम होते हैं, एंड इट कंटिन्यूज फॉर 2-3 डेज। बाय द वे दिस

0: अप्लाइज टू कार क्रैशेज एंड सुसाइड्स टू, द सेम परसेंटेज उनको देखते हैं, 24% मार्च में बढ़ते हैं, 21% कम होते हैं नवंबर में। तो एक घंटे से कितना फर्क पड़ता है,
1: एक घंटे से। अभी कभी कभी घंटे तो हम चलो काउंट करते हैं, जैसे हम कई बार बात करें, कभी कभी हम डेटा में और इसमें बहुत जाते हैं, पर एवरीबडी के जो हर एक के जो शरीर और बॉडी बनावट होती है ना, वो भी अलग होती है। तो हमने कितना भी डेटा देखा, हमने कितना भी, फिर भी हर एक को अपना फाइंड आउट करना चाहिए, मुझे कितनी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे कोई 4-5 घंटे सोने के बाद भी वो सारा दिन इतना फ्रेश चल लेता है, इतने प्रोग्राम्स भी कर लेगा, इवेंट भी कर लेगा, हमें लगेगा हम भी कर सकते हैं।
0: हाँ, लेकिन हम अलग हैं,
1: हम अलग हैं, हमारी बॉडी की बनावट कई बार अलग होती है, उसमें भी हम एकदम कॉपी नहीं कर सकते। हमें अपनी कैपेसिटी जरूर बढ़ानी है,
0: बिल्कुल
1: हमें बढ़ानी है। अगर हमें लगता है हम 9 आवर्स हैं, तो हम पहले 8 पर जाएं, हम 8 हैं तो फिर उसको 7 पर लेकर के जाएं। पर किसी को देख करके कि जी वो तो 4-5 घंटे में कर लेता है, तो हम भी कर लेंगे, दैट ऑल्सो डैमेजेस योर बॉडी।
0: हाँ, किसी को देख के कॉपी मत करो, क्योंकि ट्विंस भी जो होते हैं ना, वो भी एक दूसरे जैसे नहीं होते, शायद दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन बॉडी की बनावट जो है, मेंटल मेकअप जो, वो अलग ही होता है।
1: एक दूसरे से इंस्पायर जरूर होना चाहिए, लेकिन कंपेयर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इंस्पायर हो, कंपेयर मत करो।
1: इंस्पायर जब आप होते हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी पर वर्क करेंगे
0: जी,
1: आप उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करेंगे, पर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और वीकनेसेस को खत्म करेंगे। तो इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन हर एक के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। देखो अभी क्या होता है, मेडिटेशन भी इतना पावरफुल है, कभी कभी कई मेडिटेशन ऐसे भी होते हैं कि आप अगर 1 मिनट भी प्रॉपरली करें, 1 मिनट भी, तो वो 1 घंटे की नींद जितने होते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात।
1: 1 मिनट ऑल्सो,
0: ऐसा
1: जी, अगर आप 1 मिनट में अपने थॉट्स को, 1 मिनट में 30-40 थॉट्स चलते हैं
0: जी,
1: लेकिन अगर हम 1 मिनट में अपने थॉट्स की स्पीड को बहुत कम कर देते हैं, एक थॉट में स्थित होने की कोशिश करते हैं, आपका ही मन है, आप धीरे धीरे उसको कंट्रोल करते हैं, और आप पूरे 1 मिनट समझो एक ही थॉट में है, आई एम अ पीसफुल सोल, या आप 1 मिनट के लिए परमात्मा से कनेक्ट होकर के एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उसकी एनर्जी आपके अंदर अब्सॉर्ब हो रही है, 1 मिनट जो 60 सेकेंड्स, इसमें कॉन्सेंट्रेशन लगता है, एकाग्रता लगती है, पर आपकी 1 घंटे की थकावट 1 मिनट में दूर हो सकती है। That is why आप हमेशा देखेंगे कि योगी जो होते हैं, जो कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, उनकी नींद हमेशा कम होगी, वो 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, कहीं 3:30 बजे उठ जाते हैं, हर जगह हर रिलीजन में मंक्स होंगे, साध्वी होंगे, जल्दी उठेंगे, सोएंगे भी 10-11-12 तक और जल्दी उठ जाएंगे, क्यों, मन में उतनी हलचल ही नहीं है, मन में उतनी नेगेटिविटी नहीं है, वेस्ट
0: नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रीचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रीचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अच्छी और क्वालिटी स्लीप के लिए डिजिटल डिस्कनेक्ट क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: ये पावर नैप का कॉन्सेप्ट भी बीच में मैंने बहुत सुना था कि भाई अगर रात को नहीं सो पा रहे हो किसी कारण से तो एक काम करो, दिन में 15 मिनट की नैप ले लो, 10 मिनट की नैप ले लो। और बहुत लोग, मेरे कुछ दोस्त हैं, कहते पावर नैप बहुत इफेक्टिव होता है, मैं एकदम रिफ्रेश हो जाता हूँ। मुझसे आज तक नहीं हो पाया। पावर नैप का क्या चक्कर है?
6: पावर नैप इफेक्टिव तो होता ही है, बना वो नॉर्मली कहते हैं इट्स 20 मिनट, लेकिन 20 मिनट में अब अगेन ये सब कर पाए, ये कोई करने की चीज तो नहीं होती है। कई लोगों के लिए आफ्टरनून में खाने के बाद अगर उनको 20 मिनट का नैप मिल जाए तो वो एकदम फ्रेश हो जाते हैं
5: जी,
6: क्योंकि एकदम वो बहुत डीप स्टेज ऑफ स्लीप में चले जाते हैं। कोई उनके अंदर पर कोई बहुत थॉट्स नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, डीप स्लीप है, और उठने के बाद उनको ऐसा लगता है जैसे सारा एग्जॉशन जो था वो खत्म हो गया और एकदम फ्रेश फीलिंग हो जाती है। तो अगर वो किसी के लिए काम करता है और वो अगर ले सकते हैं तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट डज वर्क। अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि वो डिसकनेक्ट हो पाए।
5: हाँ, इसलिए भी नींद नहीं आती।
6: आप पावर नैप क्यों नहीं ले पाते? आप पावर नैप आप बीच में ले रहे हैं दिन के, समझो आप वर्क प्लेस पर हैं, कई लोग तो काउच पर बैठे बैठे 20 मिनट्स ले लेते हैं, मतलब उनके लिए डिस्कनेक्ट होना बहुत इजी होता है। अब कई हैं उन्होंने 20 मिनट का ब्रेक तो ले लिया
5: लेकिन डिस्कनेक्ट नहीं हुए,
6: डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर उसने ये किया, उसने किया कि नहीं किया, तो आपने 20 मिनट्स का किया, आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप उसको उसकी स्पीड स्लो नहीं कर पा रहे हैं आप, और उतने में तो 20 मिनट से पूरे हो जाते हैं। तो ये भी एक आर्ट है कि आप अपने को अगेन दिस ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आपके आपको अपने मन को कहाँ लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, और फिर कब वहां से डिस्कनेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कल है, उसकी प्रेपरेशन मुझे शाम को करनी है, मेरा मन शाम को वहां पर जाए ना,
5: अभी से परेशान नहीं हो कि अरे कैसे होगा, शाम तक मैं कर पाऊंगा या नहीं।
6: जब आप अभी कर ही नहीं सकते हैं
5: तो क्या
6: आपके 4-5 घंटे हैं, कुछ और आपको करना है, आप उसी समय पर वो टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपका मन बार बार वहां जाता है, आप कहते मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता, बार बार वही थॉट आता है। सो अगेन ये कमजोर मन की निशानी है, आपके कंट्रोल से नहीं चल रहा, वो आपको कंट्रोल से चला रहा है। अगर आपको उस मीटिंग के बारे में शाम को सोचना है या कल सोचना है, सोचेंगे ना, प्रिपेयर भी करेंगे, प्लान भी करेंगे, लेकिन जब डिस्कनेक्ट होना है, डिस्कनेक्ट हो जाए। हमने तो कहीं अपने सीनियर्स को देखा है, वो सोते थे 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स डीप स्लीप।
5: क्या बात है,
6: जबकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत चैलेंजेस, ऐसा नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इतना भी ध्यान दे रही हूँ कि मुझे इस मीटिंग के बारे में 4 घंटे के बाद सोचना है, तो मैं अपने मन को कहती हूँ अभी नहीं, अभी सोच करके चिंता नहीं करनी है, अभी पहले ये काम खुशी से करना है, माइंडफुल होकर करना है, प्रेजेंट में करना है, 4 घंटे के बाद इसको करेंगे। दिस इज मेडिटेशन।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, बबलू वर्मा जो हैं वो सुरेश वर्मा के बेटे हैं, बख्शी का तालाब लखनऊ से लिख रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 से 7:30 तक अपनी कार ड्राइव करते हुए स्कूल जाते समय सुनता हूं, और ग्रेजुएट 2008 में मैं कर रहा था तो मेरे एनसीसी के सर ने मुझे ऑलवेज बी पॉजिटिव का थॉट दिया और हर घटना में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूं, मैं ये सोचता भी हूं। आज तक मेरे साथ जो भी हुआ सब अच्छा होता हुआ, ये मैं ये सोचता हूं। मेरा प्रश्न सिस्टर श्रेया से यह है कि हम जो योजना बनाते हैं वो कार्य लगातार नहीं हो पाता और कुछ और ही हो जाता है, ऐसा क्यों?
3: हम कई बार ये सबको सिखाते हैं कि अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, और उसके बाद भी हम कई बार देखते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा
2: जी।
3: तो हमें लगता है मैंने जैसा सोचा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि लॉ भी है संकल्प से सिद्धि। लेकिन इसमें एक चीज और है, एक फैक्टर जो हमें दिखाई नहीं देता पर हर समय काम कर रहा है
2: जी।
3: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरकनेक्टेड है
2: जी।
3: तो जो हमने पास्ट में किया था, जो एनर्जी हमने भेजी थी, जो कर्म हमने किया था, वो कई बार लौट करके आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन कि आपके घर में कोई बीमार है, आप अच्छा सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप हर बार जब जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नहीं अभी ठीक नहीं है, या पैरामीटर्स ठीक नहीं दिखाई दे रहे, तो आपको लगता है मैं तो सही सोच रहा हूँ, फिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं
2: जी।
3: हम सही सिर्फ इसलिए नहीं सोचते हैं कि हम सही सोचेंगे तो बाहर की जो सिचुएशन है वो हमेशा ही चेंज हो जाएगी
2: जी।
3: क्योंकि बाहर की जो सीन है वो उस व्यक्ति का भी कार्मिक अकाउंट है, आपका भी कोई पुराना कार्मिक अकाउंट है, लेकिन फिर भी सही सोचना क्यों है? क्योंकि फिर भी सही सोचने से कम हमारा मन तो शांत और स्टेबल है, और जब हमारा मन शांत और स्टेबल है तो जो भी चैलेंज होगा हम उसको फेस कर पाते हैं। There is also a possibility कि आपने बिल्कुल सही सोचा, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं हुई। ये possibility है, ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ पास्ट का कार्मिक अकाउंट है या कोई बीमारी है, लेकिन अगर वो इंक्रीज भी हो जाती है, टू एन एक्सटेंट वो शरीर भी छोड़ देते हैं, तो भी अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप इतने बड़ी सिचुएशन को भी बहुत स्टेबिलिटी से फेस करके उनको दर्द भरी विदाई देने की जगह दुआओं भरी विदाई दे पाएंगे। सो ट्रू, जरूरी नहीं है हर चीज हमारे अनुसार हो, बिकॉज दैट वन फैक्टर, वो वन फैक्टर जो है पास्ट का जो हमें याद नहीं रहता। लेकिन हम सोल ऑन अ जर्नी है, तो वो सोल ने जो जो कर लिया है, जो एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में भेज दी है, वो किसी ना किसी रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, धन का पेपर, डिफिकल्ट रिलेशनशिप, कोई चैलेंज के रूप में आता है, आज सही सोचेंगे तो वो सेटल हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर गलत सोचेंगे सो देयर चांसेस कि आप उसको और बढ़ा रहे।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. यहाँ पर कॉफी से पहले एनर्जी और चाय से पहले बग बग बिल्कुल फ्री में मिलती है. व्हेदर यू आर स्टक ऑन द टर्नपाइक, या फिर पैकिंग योर लंच बॉक्सेस, या फिर हेडिंग टू वर्क, या फिर बस प्रिटेंडिंग कि कैमरा तो ऑफ है लेकिन मैं मीटिंग में फुल्ली अटेंटिव हूँ, जो कुछ भी कह रहे हो, आई गॉट यू. आई एम विथ यू फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स. आज का मिशन काफी सिंपल है, थोड़ा सा हंसना, थोड़ा सा गाना, थोड़ा सा रोना. नो, देयर इज एब्सोल्युटली नो रोना हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. हम करेंगे बहुत सारा बॉलीवुड का तड़का, ढेर सारी नॉस्टैल्जिया की बातें, काफी सारी देसी फील्स वाली बातें, और ऑफ कोर्स साथ में होने वाले मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, मेरे साथ बने रहो अगले कुछ घंटों के लिए ताकि तुम्हारी लाइफ और मिर्चीदार बन सके. अभी फिलहाल मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे,

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's me. Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करने क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके?
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची फ्रेश माल।
4: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल 4 से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगले एक मिनट में हम करने वाले हैं थोड़ी बहुत टाइम ट्रैवलिंग। सो लेट्स फाइंड आउट 1762 में क्या हुआ, जब कैथरीन द ग्रेट बिकेम द ज़ारीना ऑफ रशिया। फिर 1990 में रशिया के ज़ार निकोलस द सेकंड और उनकी फैमिली को एग्जीक्यूट किया गया। 1936 में शुरू हुई स्पैनिश सिविल वॉर। अब मूड को थोड़ा सा होपफुल करते हैं। 1975 में स्पेस में हुआ एक हैंडशेक दैट मेड द वर्ल्ड स्माइल। अमेरिका का अपोलो स्पेसक्राफ्ट और सोवियत का सोयूज कैप्सूल सक्सेसफुली डॉक हुए। कोल्ड वॉर के बीच में ये मोमेंट प्रूफ था कि कभी कभी डिस्टेंस सिर्फ अर्थ पर होता है। और अगर तुम डिज्नी फैन हो मेरी तरह, तो 1955 में आज ही के दिन डिज्नीलैंड ने कैलिफोर्निया में अपने गेट्स खोले थे। हिस्ट्री के आज के दिन के कुछ पेनफुल पेजेस भी हैं। 1996 में द WTA फ्लाइट 800 का ट्रैजिक एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन फिर 1998 में रोम स्टैच्यू अडॉप्ट हुआ, जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की फाउंडेशन रखी। और 2014 में मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 ट्रेजेडी ने दुनिया को शॉक कर दिया। और हम उन सब लोगों को आज रिस्पेक्टफुली याद करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर योर टाइम ट्रैवलिंग जर्नी विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फटाफट से जाओ मेरे सोशल्स चेक करो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी के लिए मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

19th of July को. लेकिन उसके पहले थर्ड प्लेस प्ले ऑफ होने वाला है बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड. न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने मिलकर होस्ट किए अब तक 8 मैचेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट एट मेटलाइफ स्टेडियम. और कल का बिगेस्ट बस था, फीफा ने अनाउंस किया है कि हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियंस को सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बल्कि एक्सक्लूसिव चैंपियनशिप रिंग्स भी मिलने वाली है. टोटल 2026 इंडिविजुअली नंबर्ड रिंग्स बनेंगी 30 चैंपियंस के लिए और बाकी फैंस के लिए. लेकिन अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हावियर मिले फाइनल देखने के लिए न्यूजर्सी नहीं आ रहे. क्यों? सुपरस्टिशन है भाई. उनका मानना है कि वो घर से ही मैचेस देखते आए हैं और टीम जीतती रही है तो रूटीन चेंज नहीं करेंगे. मतलब कि लकी जैकेट हो या लकी सोफा हो, फुटबॉल फैंस की फीलिंग काफी सिमिलर है क्रिकेट फैंस की फीलिंग्स के साथ. और टॉप फुटबॉल फैक्ट्स, टूर्नामेंट में अभी तक लायनल मेसी गोल्डन बूट रेस में टॉप पर पहुंच चुके हैं 8 गोल्स और 4 असिस्ट्स के साथ. रोड्री हैज बीन मिडफील्ड मेट्रोनोम विद द मोस्ट पासेस. और स्पेन के यंगस्टर लामिन यमाल सक्सेसफुल टेक ऑन्स में सबसे आगे हैं. फाइनल में इन स्टार्स पे सबकी नजर बनी हुई है. अब सवाल ये है रिंग किस फिंगर में जाएगी, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में? अरे भाई, जिस हाथ में ट्रॉफी जाएगी उसी हाथ में तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, अर्जेंटीना या स्पेन को? फटाफट से मुझे बताओ. डीएम करो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे मिर्ची मॉर्निंग।
2: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
1: And World Cup fever is officially peaking. Spain और Argentina का grand finale blockbuster होने वाला है at the MetLife Stadium, New Jersey. इस Sunday

0: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट
0: हिट गाना,
1: हिट गाना, हिट गाना, हिट
0: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Team Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग सनशाइन, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वेदर का हालचाल जानने का टाइम आ चुका है। फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 67 डिग्रीज फारेनहाइट, स्काइज आर मोस्टली क्लियर, तो सुबह की ड्राइव एकदम मस्त मस्त होने वाली है। सुबह 9 बजे से थोड़े से क्लाउड्स जो हैं वो हेलो बोलने वाले हैं, और 9 बजे के बाद स्काई थोड़ा और क्लाउडी हो जाएगा। रेन लवर्स सॉरी यार, आज के लिए भी, अगले 24 घंटों में भी पिछले 24 घंटों की तरह 0 मिलीमीटर्स की बरसात होने वाली है। रेन का फोरकास्ट नहीं है, यानी कि अम्ब्रेला को आज वर्क फ्रॉम होम करने दिया जाए। आफ्टरनून में मर्क्यूरी चढ़ने वाली है 87 डिग्री फारेनहाइट तक, और ह्यूमिडिटी की वजह से फील होगी 89 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब कि वेदर बोलने वाला है कि मैं बहुत हॉट हूं आज, बिल्कुल मिर्ची की तरह। और एक इंपॉर्टेंट हेड्स अप, एयर क्वालिटी अलर्ट इज इन इफेक्ट। आज के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। अगर तुमको एस्मा, एलर्जीज या ब्रीदिंग इश्यूज हैं, तो आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं करना, या बहुत ही ज्यादा लिमिट में करना है। विंडोज को बंद रखना है अगर पॉसिबल हो, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। मॉर्निंग वॉक्स के लिए आज इंडोर में ही रहना, मतलब घर पर रहकर कुछ एक्सरसाइज कर लेना, बिकॉज ये AQI इज प्रीटी बैड। गुड न्यूज ये है कि आज का हाई इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक कल का हाई, तो वेदर जो है उसमें कोई प्लॉट ट्विस्ट आज के दिन है नहीं। तो जैसा कल का दिन गया था ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, वैसा आज का दिन भी जाने वाला है। लेकिन हम इसे बनाएंगे थोड़ा सा और मिर्चीदार। बाहर निकलते वक्त लेयर के प्लेयर बनना, वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ के साथ, एंड ऑफकोर्स कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। अभी चलाते मिर्चीदार बैंगर्स, ओनली फॉर यू, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: इधर मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए अराउंड द वर्ल्ड की खबरें, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूएस में ट्रक ड्राइवर्स को लेकर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट काफी हेडलाइंस बना रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन और ट्रकिंग वर्कफोर्स को लेकर कमेंट्स दिए हैं और कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स की जगह अमेरिकन वेटरन्स को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस डिस्कशन का असर उन इमिग्रेंट कम्युनिटीज पर भी पड़ सकता है जहाँ काफी साउथ एशियन ट्रक ड्राइवर्स काम करते हैं। पॉलिसी डिस्कशंस अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। नंबर टू पर मिडिल ईस्ट से टेंशन की खबर आ रही है। ईरान ने कहा है कि उसने बहरीन और कुवैत में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया है, जबकि यूएस ने ईरानियन मिलिट्री साइट्स पर नए एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इस एस्केलेशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग ट्रैफिक फिर से इंपैक्ट हो रही है। एंड नंबर थ्री पर पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा से एक हार्ट ब्रेकिंग अपडेट। रिपोर्ट्स के हिसाब से हैवी क्राउड रश के दौरान करीब 100 डिवोटीज इंजर हुए हैं और एक व्यक्ति की जान चली गई है। इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर तुम्हारे लव्ड वंस फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, उनसे क्विक चेक इन कॉल जरूर कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट विथ मी ऑन सोशल्स। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। एंड नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vizba la burka. Mirci, burka.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
2: आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो.
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं,
2: रहे हैं.
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो तो कोई बपौती है.
3: बात नहीं, तमीज सीखिए. नहीं,
2: तमीज नहीं, सुनिए. बिल्कुल नहीं सुननी है.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Okay.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। तो सीन कुछ ऐसा है कि स्पाइडरमैन के टॉम हॉलैंड ने मजाक में रिवील किया रिसेंटली कि फुटबॉल सुपरस्टार अर्लिंग हॉलैंड ने उनका डिनर इनवाइट वाला DM जो है उसे इग्नोर कर दिया। आउच। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि इंटरनेट पर बात इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि अब हॉलैंड ने ऑफिशियली रिप्लाई तो कर दिया है कि डिनर इन्विटेशन एक्सेप्टेड अ लिटिल लेट, जस्ट नेम द प्लेस। वाह यार, बेटर लेट देन नेवर। और हॉलैंड ने रीजन भी दिया है कि मैं मूवीज नहीं देखता, मैसेज अननोन पर्सन का लगा इसीलिए रिप्लाई नहीं किया। मतलब इमेजिन करो यार, दुनिया का स्पाइडरमैन भी कभी कभी लिस्ट में न्यू नंबर हु दिस वाले मीम में फंस जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी डिलेड रिप्लाई इज नॉट एक्चुअली गोस्टिंग, समटाइम्स इट्स जस्ट ऑकवर्ड। वैसे मजा तो तब आएगा जब हॉलैंड और हॉलैंड दोनों एक साथ डिनर करेंगे। किस नाम से बुलाएंगे एक दूसरे को? दोनों के नाम तो एक ही तरह साउंड करते हैं। वैसे जो भी हो, डिनर काफी स्पेशल ओकेजन वाला लग रहा है। और स्पेशल ओकेजन की बात हो ही रही है तो परफेक्ट ज्वेलरी की बात कैसे ना हो। आरके ज्वेल्स लेकर आए तुम्हारे लिए बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस के साथ उनकी स्टनिंग कलेक्शन तुम्हारे एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी वहां पर मिल रहा है फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड ऑन देयर एक्सक्विजिट ज्वेलरी कलेक्शन। क्योंकि डायमंड्स मे बी फॉरएवर, लेकिन गुड डील्स या ऑफर्स जो है ना वो कभी कभी आते हैं। आरके ज्वेल्स पर फटाफट से पहुंचो अगर तुम्हें ज्वेलरी शॉपिंग करनी है तो। और मिर्ची पर बने रहो, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: A very happy birthday to everyone celebrating today. चाहे तुम न्यू जर्सी में हो या फिर न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में फंसे हुए हो, बॉस्टन में कॉफी सिप कर रहे हो या फिर फिली में वर्क फ्रॉम होम करते हुए आई एम ऑन म्यूट कह रहे हो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड गेस व्हाट, आज तुम्हारा बर्थडे तुम अकेले नहीं मना रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ फेमस पर्सनैलिटीज भी हैं जो आज ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुई थी. इंडिया से सबसे पहले बर्थडे विशेष जाती है एक्टर एंड पॉलिटिशियन रवि किशन जी को, जिन्होंने हिंदी और भोजपुरी सिनेमा दोनों में ही अपनी जबरदस्त पहचान बना ली है और अभी फिलहाल पॉलिटिशियन बने हुए हैं. उनपे काफी मीम्स भी बनते हैं एंड ही इज प्रीटी कूल अबाउट इट. And happy birthday also to the graceful Zarina Wahab ji, singer, entrepreneur, or youth icon Ananya Birla ka bhi aaj happy.

बर्थडे है एंड द लेजेंडरी फिल्म मेकर भारती राजा, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को अनफॉरगेटेबल स्टोरीज दिए, उनका भी आज हैप्पी बर्थडे है। इंटरनेशनल बर्थडे गैंग में है डेविड हासलहॉफ, हाँ हाँ ये वही बेवॉच वाले लाइफ गार्ड है, साथ ही कंट्री म्यूजिक स्टार लूक ब्रायन, एक्ट्रेस बिली लॉर्ड एंड एक्ट्रेस समर बिशल, ये सभी आज ही सेलिब्रेट करें अपना बर्थडे तुम्हारी तरह। तो अगर आज तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तो केक कैलोरीज आज ऑफिशियली काउंट नहीं होती है, कल से जिम का गिल्ट जो है वो दोबारा से रख लेना अपने सर पर, लेकिन आज के दिन सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, खुशी मनाओ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड ऑफकोर्स सेंड मी योर बर्थडे शाउट आउट्स इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, That is MIRCHIPRIS, and WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: ओके जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग। जरा पता करने का टाइम आ चुका है कि गोल्ड का रेट कहाँ पर पहुँचा है।
2: गोल्ड ट्रेडिंग है $3,990, $3,990 पड़ रहा है। उसके साथ गोल्ड इस साल पहली बार 4,000 के मार्क के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस करेक्शन के साथ हम चाहेंगे कि आप गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करें, 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 22 कैरेट गोल्ड डिजाइनर ज्वेलरी जैसे जलेबी नेकलेसेस राज ज्वेल्स के साथ आए, सेलेक्ट करें, आज गोल्ड का प्राइस लॉक करें और बिना किसी हिडन फी और इंटरेस्ट के 9 इंस्टॉलमेंट 9 महीने में पैसे दें। ज्वेलरी आज आपके साथ घर ले जा सकते हैं अप्रूव होने पे। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
1: यू। हैव इट, गोल्ड का लेटेस्ट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। आप फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स पता करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले इंडिया ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरियाणा से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये ट्रेन डीजल नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी और एग्जॉस्ट में सिर्फ वाटर वेपर निकलेंगे। ये टारगेट करता है ट्रैवल के तीन एस्पेक्ट्स को, क्लीनर ट्रैवल, स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड पोल्यूशन। नंबर टू पर इंडिया और यूके की दोस्ती का बिजनेस एडिशन भी सुपरहिट चल रहा है। इंडिया यूके ट्रेड अग्रीमेंट ने रोल आउट के पहले ही दिन इंडिया ने लगभग $140 मिलियन के गुड्स जीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट किए। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, जेम्स, ज्वेलरी, मतलब मेड इन इंडिया अब यूके शॉपिंग कार्ट्स में और भी इजीली लैंड करेगा। एंड फाइनली नंबर थ्री पर स्पोर्ट्स से, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट थर्ड ओडीआई रोहित शर्मा का इंडिया के लिए लास्ट ओडीआई हो सकता है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेक्टर्स 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए यंगस्टर्स जैसे यशस्वी जायसवाल को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं। And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Well, I'll stay tuned and stay hot.

0: पास तुम रहते हो।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23
4: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का?
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ, 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
4: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब हम पता करने वाले हैं कि आज हमारे सितारे क्या कह रहे हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, पैसों की टेंशन को थोड़ा वेकेशन पे भेजो। वीकेंड आ गया है, मेमोरीज बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि लोगों से बनती है। लकी कलर आज तुम्हारा है ऑरेंज, लकी नंबर है 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, रिलेशनशिप में ड्रामा कम, जूम आउट ज्यादा करो। हो सकता है कोई प्रॉब्लम उतनी बड़ी हो ही ना जितनी तुम्हें लग रही हो। लकी कलर फॉर यू इज ग्रीन, लकी नंबर इज 28। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, रिचार्ज मोड ऑन कर लो। आज खुद को परमिशन दो स्लो होने की, फोन ही नहीं बल्कि इंसान भी चार्जिंग मांगता है। लकी कलर फॉर यू इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, आज एम्बिशन फुल पावर में है। अगर दिल किसी गोल पर सेट हो चुका है तो यूनिवर्स भी कहेगा चैलेंज एक्सेप्टेड। लकी कलर्स फॉर यू आर सिल्वर एंड गोल्डन, लकी नंबर इज 33। लियो यानी कि सिंह राशि, माइंड की सफाई का टाइम आ चुका है। नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालो और पॉजिटिव थॉट्स को अंदर लेकर आओ। रिसाइकल बिन भी एम्प्टी करते रहना चाहिए, तुम शाइन करने के लिए ही बने हो। लकी कलर फॉर यू इज ब्राइट येलो एंड लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, आज क्रिटिसिज्म की वॉल्यूम थोड़ी सी कम करो। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, वरना तुम स्पेशल कैसे लगोगे। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, लकी नंबर इज 22। That rhymed. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। That was the end of राशि जोन पार्ट 1। थोड़ी सी देर में राशि जोन पार्ट 2 लेकर आऊंगी मैं, लेकिन तब तक तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स एंड जाकर मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: Ahora va.
1: It's Gunny.
2: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर राशि जोन पार्ट टू.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: सबसे पहले लीब्रा यानी कि तुला राशि. हर बात पर ट्रस्ट मी सुनकर इंस्टेंटली ट्रस्ट मत कर लो. वेरीफाई फर्स्ट बिलीव लेटर. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 18. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि. दिल की बात कॉन्फिडेंटली बोलो. जो लोग ट्रूथ से अनकंफर्टेबल हैं शायद उन्हें वही सुनना जरूरी होता है. लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 41. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि. सॉफ्ट हार्ट अच्छा है लेकिन बाउंड्रीज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. आज थोड़ा फर्म रहना ही स्मार्ट मूव कहलाएगा. लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 9. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. रूल बुक को थोड़ा सा साइड रखो. हर काम का एक ही फॉर्मूला नहीं होता है. कभी कभी तुम्हारा शॉर्टकट ही बेस्ट राउट हो सकता है. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 26. अक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि. किसी की क्रिटिसिज्म पर गुस्सा आए तो आज गुस्सा मत करो. पहले चेक करो उसमें थोड़ी सी सच्चाई तो नहीं है. ग्रोथ भी कभी कभी एक अनकंफर्टेबल रास्ते से तुम्हें लेकर जाती है. कभी कभी वो फीडबैक के तौर पर आती है. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 37. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस यानी कि मीन राशि. आज आइडियाज रॉकेट स्पीड से आएंगे. बस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है इसीलिए थोड़ा सा डबल चेक करना जरूरी है. और हाँ, सिर्फ AI ही हालुसिनेट नहीं करता है. कभी कभी हमारे ओवर थिंकिंग भी ऑस्कर विनिंग इमेजिनेशन दिखा देते हैं. लकी कलर फॉर यू इज सी ग्रीन. लकी नंबर इज 22. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन पार्ट टू. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033 6472 4. फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और बस इसी गुड वाइब के साथ आज का मिर्ची मॉर्निंग्स यहीं पर समाप्त होता है। मेरा नाम है प्रिसिला, मैं ही तुम्हारे साथ पिछले कुछ घंटों से थी, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। जाने से पहले तुम्हें ये इंपॉर्टेंट हेड्स अप देकर जाती हूँ कि अगर तुम न्यूयॉर्क या नियर बाय एरियाज में हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान आज रखना पड़ेगा। कनेडियन वाइल्ड फायर स्मोक की वजह से सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 200 से ऊपर चला गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से विजिबिलिटी जो है वो भी काफी कम हो गई और हवा में बर्निंग वुड की स्मेल महसूस की जा सकती है। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि शिकागो, ग्रैंड रैपिड्स, पिट्सबर्ग एंड टोलेडो जैसे शहरों में भी एयर क्वालिटी अलर्ट्स इशू किए गए हैं। तो आज का मिनी लाइफ हैक ये है कि अगर जरूरत ना हो तो आउटडोर एक्टिविटीज को बिल्कुल लिमिट कर दो या बिल्कुल करो ही मत। स्पेशली अगर तुमको एस्मा, एलर्जीज या ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स पानी पीते रहो और फ्रेश एयर की जगह फ्रेश फ्रेश प्लेलिस्ट यानी कि मिर्चीदार बैंगर्स इंजॉय करते रहो। अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है तो मेरी तरफ से टाटा बाय बाय है। यू एंजॉय योर वीकेंड, खाओ पियो ऐश करो, एंड इफ यू गोना मिस मी फटाफट से मुझे फॉलो कर लो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रीना रॉय ने अर्ली 70s में जो अपनी पहली फिल्म साइन और शूट की थी वो थी डायरेक्टर बी आर इशारा की नई दुनिया नए लोग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसका पहला सीन शूट करते वक्त इनको क्या दिक्कत आई थी, सुनिए एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: पहली बार कैमरा फेस किया तो वो ऐसा सीन था कि आपका बाप मर गया, एंड आई जस्ट लाफ मनिका के क्या कैसे करने का, एंड दे सेड ओ गॉड क्या करें अभी इसका। देन दे सेड कि अच्छा ऐसा नहीं, मतलब ये हो गया, वो कहते हैं ब्रेन वॉश जैसा, तुम्हारा ऐसा सैड हो गया, वो हो गया। आई वाज सो दिस के देखो तो बिलीव करो ना। तो उन्होंने फिर बोला ये हम नहीं करेंगे, अब थोड़ा लाइट सीन लेते हैं। देन आफ्टर दैट इशारे जी ने कहा कि आई डोंट थिंक सो ये लड़की जो रेफरेंस जहाँ से भी आए, बट आई डोंट थिंक सो शी कैन मेक इट इन इंडस्ट्री, बिकॉज इसको तो समझ ही नहीं है कि एक्टिंग क्या है, ना इंस्टीट्यूट ना कुछ ना ट्रेनिंग ना कुछ।
0: एक्टिंग सीखने में बंदी को थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कुछ चीजों में ये एकदम प्रो थी, जैसे कि डांसिंग, बाइक चलाना। इन्हें बाइक चलाने का बहुत शौक था, कितनी फिल्मों में इन्होंने बाइक चलाई है।
1: मैं बाइक पे ही रहती थी, जब शॉट रेडी होता था तो मुझे मैसेज आता था मैम शॉट रेडी बाइक छोड़ के आ जाओ, क्योंकि इतनी अच्छी बाइक थी तो मम्मी तो घर में रखने नहीं देती थी, तो और वादा दिया है मम्मी को कि बाइक नहीं खरीदनी है, तो नहीं खरीदी थी। छोटी बहन ने चला के पैर छुड़वा लिया, तब से बोला कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा देखा देखी बोली छोटी ने चलाई, तो बाइक तुम खरीदोगी नहीं।
0: इनकी फिल्म सनम तेरी कसम में तो इनकी एंट्री बाइक पे होती है, और उस बाइक पे इनके किरदार का नाम भी लिखा रहता है NISHA निशा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सका बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट? और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
3: बोल कौन रहे हैं?
4: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
3: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
4: बिल्कुल
3: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
4: सही बात है,
3: गर्ल्स को नहीं देंगे।
4: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
3: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं।
4: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ
3: किससे बात कर रहे हैं?
4: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
3: हेलो,
4: हाँ बोलिए।
3: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
4: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
3: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
4: हाँ?
3: नकली तरह से आप मेरे से
4: नहीं,
3: बातें कर
4: नहीं
3: रहे हैं।
4: नकली तरीके से क्या?
3: नहीं, असली मुझे दिख रही है।
4: असली नहीं,
3: नहीं
4: मैं, मेरी वाइफ है यार।
3: नहीं
4: नहीं, तमीज सीखिए। नहीं
3: तमीज,
4: नहीं
3: सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए,
4: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
3: Okay.
4: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pudani jeans with Charu, only on Mirch.

0: रीना रॉय उन एक्टर्स में से एक थीं जिन्होंने नए टैलेंट के साथ काम करने से कभी इनकार नहीं किया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसीलिए सुभाष घई जब अपनी डेब्यू फिल्म कालीचरण के लिए उनके पास पहुँचे तब भी उन्होंने मना नहीं किया। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: I didn't have any problem. मैंने तो हमेशा राज बब्बर was new. I worked with him and they were wanted to like this chapter वाले थे कि भाई इनको लेंगे तो ये problem है. Even अंधा कानून, then कमल हसन. So I don't have problem to work with new people. मैंने सुभाष घई के साथ as a leading काम की वो फिल्म लगी नहीं. He was the hero. और उसके बाद I don't know what happened. वो फिल्म complete हुई नहीं हुई, we don't know anything. And then came to my mother कि मुझे direction का chance मिला है तो I would like your daughter to work in the film. उस तरीके से, और वो मेरी मम्मी के बेटे भी बने हुए थे उस जमाने।
0: वैसे कालीचरण फिल्म से एक और चीज की शुरुआत हुई थी, वो थी रीना रॉय एंड शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बीच में नजदीकियां, जो बाद में उनको काफी महंगी पड़ी बिकॉज इट ब्रोक हर हार्ट।
1: गुजर गई जो दास्तां, अभी क्या रिपीट करनी।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
3: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only

0: रीना रॉय की मोस्ट पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ी थी जीतू जी के साथ। जी मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने कुछ 22 फिल्मों में साथ में काम किया, जिनमें 17 फिल्मों में ये एज रोमांटिक पेयर थे। इनमें से 12 फिल्में हिट हुई थी भाई। इनकी पहली फिल्म साथ में जो रीना रॉय जी की फर्स्ट हिट फिल्म भी थी, वो थी 1973 की जैसे को तैसा। ये फिल्म रीना जी को कैसे मिली, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये एक्चुअली डबिंग थी जितेंद्र जी की, एंड वहाँ पर ये लोग वो एडिटिंग कर रहे थे कुछ, मेरी वो एक फिल्म की जो लगी नहीं, तो दे वाज सम लिटिल डांस, तो दे वांटेड सम न्यू गर्ल न्यू फेस एंड ऑल दैट। उस हिसाब से जितेंद्र जी ने देखा कि ये लड़की कौन है, जस्ट फाइंड आउट, क्योंकि हमारे डबल रोल था जीतू जी का, उसके लिए एक लड़की जो दूसरे वाले हीरो के साथ है, इनको ले लेंगे। उस हिसाब से आई वाज सेलेक्टेड जितेंद्र जी, वेरी नाइस मैन एंड वेरी गॉड फियरिंग एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड पंचुअल, वेरी पंचुअल। So we completed very fast. वो 2-3 महीने में complete हो गई फिल्म, and it was super duper hit.
0: इसी बात पे इन दोनों का इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रीना रॉय जो फिल्मों में नई नई आई थी ना, उनको एक बड़ी मुश्किल आती थी, सीरियस सीन में उनकी हंसी निकल जाती थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार तो डायरेक्टर बी आर इशारा ने उनको एक धमकी भी दे दी थी कि अगर तुम हंसी और रोई नहीं तो फिर देखना। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में रीना जी ने क्या शेयर किया था।
1: दैट वाज इन जरूरत कि आपके पति लंगड़े हो गए तो उनका वो हो गया, ही इज ऑन व्हीलचेयर एंड आई हैव टू रिएक्ट, और वो लंगड़े हो गए और आपको रोना है, चिल्लाकर और पैरों के पास जाना है। और मैं गई, चिल्लाई, मुंह छुपा के मैं हंस रही थी, फिर मैं वो देखू विजय और मैं हंस दू। उन्होंने क्या किया फिर, बोले कि अभी तुम अगर नहीं किया ना तो मैं चक्का लगाऊंगा तुम्हें सिगरेट का, और ही यूज्ड टू स्मोक, डराने के लिए नहीं, जैसे कि यू डोंट डू योर होमवर्क यू आर गोइंग टू गेट पिस्टिक, वैसा वाला।
0: वैसे रीना जी जब नई नई फिल्मों में आई थी ना, इनको लेकर एक अफवाह भी थी
1: शुरू में जब मैं आई थी, तो वो कहते थे कि आशा पारेख की बेटी है, एंड आई हैड डन दैट जख्मी, दैट वाज ताहिर एंड नासिर हुसैन प्रोडक्शन, तो वो उस वजह से उन्होंने कहा आपको पता है अफवाहें तो होती रहती।
0: अभी रूमर्स का तो वही है फिर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं क्या कह रही थी, गाना सुन लेते हैं जख्मी फिल्म का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: रीना रॉय जब छोटी थी तो बड़ी शरारती थी, उछलती कूदती फुदकती घूमती फिरती रहती थी बॉम्बे के बांद्रा एरिया में। वहीं पर नरगिस जी ने उनको नोटिस किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में सुनिए रीना जी ने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मैं रोड पे खेल रही थी, नरगिस जी ने मुझे देखा एंड देन आफ्टर दैट दे वांटेड टू नो कि मेरा कौन सा मतलब हम कौन सी बिल्डिंग में है। तो उनके ऑफिस से कोई लोग आए, उन्होंने फिर कहा कि आपकी बेटी को फिल्मों में काम करना है बिकॉज हम इसी टाइप की लड़की देख रहे हैं फॉर द फिल्म। एंड माई मदर सेड नहीं अभी तो वो पट रही है, अभी तो इतनी जल्दी हम नहीं वो करवा सकते। उसके बाद फिर मैं मुझे पता लगा तो मैंने भूख हड़ताल कर ली, जो कि सबसे ज्यादा खाने का शौक मुझे था। तो मम्मी को बहुत टेंशन हो गई, मेरी बहन बरखा, उसने कहा कि मम्मी शौक है उसका थोड़ा कर लेने दो ना, बाद में तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी। That is no problem.
0: Well, इसके बाद नरगिस जी ने रीना रॉय को काफी जगह पे रेफर किया। रीना रॉय फीचर हुई थी 80s की रॉकी फिल्म में, जो संजय दत्त की डेब्यू फिल्म थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: इस दैट मिस्टर विपुल?
3: यस
4: मिस्टर विपुल, हाय, आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
3: ओके,
4: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: हैंड मिलता है,
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
3: हाँ, हु आर यू?
4: सर मनीष।
3: हु आर यू?
4: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: रीना रॉय जी क्या बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? क्या उनको फिल्में देखने का शौक था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में सुनिए उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: नहीं, मुझे फिल्में देखने का शौक था। मम्मी फिल्में मुझे नहीं दिखाती थी। जब हीरोइन रोती थी तो मैं दहाड़े मार के रोती थी, उस पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है। और विलन से तो बहुत नफरत होती थी, मतलब नींद में भी उठ के फिर कमरे में जाती थी कि वो विलन इधर तो नहीं आ गया। दैट वॉज द लाइक यू नो माई अटैचमेंट टूवर्ड्स द फिल्म। तो फिर मेरा फिल्म दिखाना बंद कर दिया था। आई न्यू दैट आई विल डू समथिंग बट आई डिडंट नो कि मैं इतनी सक्सेसफुल हो जाऊंगी। डांसिंग का भी शौक था, वो भी मुझे मेरी एनर्जी लेवल देखने के बाद मम्मी ने कहा कि इसकी एनर्जी लेवल इतना है कि ये खेलना कूदना तो इसको डांस में डाल दो, थक के सो जाए बस, उस वजह से डाला।
0: वेल, रीना जी ना एकदम हाइपर एक्टिव बच्चा थी। डांस भी सीखा, हॉर्स राइडिंग भी सीखी, बाइक राइडिंग भी सीखी, स्विमिंग भी सीखी, बड़ा कुछ सीख लिया इन्होंने। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रीना रॉय जी, क्या खूबसूरत लगती थी यार वो। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनको कब एहसास हुआ कि वो इतनी खूबसूरत हैं? सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में इस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया था।
1: एक्चुअली आई वॉज नेवर इन टू लाइक एडमायरिंग माई सेल्फ एंड ऑल दैट, बिकॉज आई वॉज वेरी मच लाइक एनर्जी उससे ऐसी भरी हुई रहती की नाचो, एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, हॉर्स राइडिंग करो, बाइक, अपने आप को देखने का। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, आई वाज नेवर इन लव विद माय सेल्फ सेल्फ लाइक, बट आई वाज वेरी हार्ड कोर, जैसे सुबह उठो तो बस प्लान बनना है कि आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है।
0: लीजिए बताइए। अच्छा, उनसे ये भी पूछा गया था कि ऐसी क्या चीज उन्होंने की जो लोगों को लगता था कि रीना रॉय कभी नहीं करेंगी।
1: इट वाज वेरी सडन, आई वाज सो बिजी, और एक्चुअली यू नो यू नीड अ ब्रेक एट टाइम्स, यू नो आप तीन शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ शूटिंग वहाँ शूटिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, फिर मैंने कहा चलो करके हम भी देखते हैं, बस मैंने कर दी।
0: वैसे बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब से इनको जो हार्ट ब्रेक मिला उससे इतनी टूट गई कि कहीं ना कहीं सुकून चाहती थी, सेटल होना चाहती थी। पर देखिए उस शादी में भी उनको ज्यादा टाइम खुशी नहीं मिली। ये प्यार इसके मामलों में ना कुछ लोगों का लक ऐसा ही रह जाता है थोड़ा हार्ड। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 70s, 80s में रीना रॉय बहुत सारे लोगों का क्रश थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में उनके क्रश कौन थे, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: यू विल रियली बी शॉक्ड बिकॉज़ यू नो आई यूज्ड टू लव मनोज कुमार, आई लव्ड हिम कि मम्मी देखो कितना देश के लिए, और मम्मी ने बोले इसने कभी कभी देखे कि क्या गाना और देन हिज फोटोग्राफ्स एंड ऑल दैट, व्हाट अ ग्रेट मैन।
0: वैसे इनको राजेश खन्ना पे भी क्रश था और इसीलिए इनकी मम्मा ने इनका राजेश खन्ना की फिल्में देखना बंद करा दिया था।
2: क्या हुआ था कि मैंने जब मैं स्कूल जाती थी तो मैंने बंक करती थी मैं, और वहाँ पर वो उनका घर था ना, वहाँ खड़े होकर अपनी दो तीन सहेलियों के साथ कि कोई झलकी मिल जाए, नजर आ जाए, वो उसके वजह से।
0: वैसे फिल्मों में काम करते करते इनको जब कोई एक्टर अच्छा लगता था तो उसको वो कैसे रीच आउट करती थी?
1: हमारे जमाने में वी कुडंट अप्रोच अ पड़ोसी, सिस्टम वाज वेरी डिफरेंट। इफ यू यूज्ड टू लाइक समबडी आल्सो, हमारी कुर्सी अलग, वो कुर्सी अलग, और मदर बीच में ऑलवेज यू नो व्हेन यू आर ग्रोइंग यू लाइक एवरीबॉडी, जो भी अच्छा हैंडसम हीरो मस्त प्यारा है वो कितना क्यूट चक्कर।
0: दिस वुमन वाज फायर क्रैकर भाई। पुरानी जींस पर मैं हूं चारू आपके साथ। आप

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: रीना रॉय के फेवरेट को एक्टर वैसे तो जितेंद्र साहब थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, बट वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट राजेश खन्ना साहब की करती थी। सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: राजेश खन्ना वाज वेरी वेरी नाइस पर्सन, दिल के बहुत अच्छे, लोगों के लिए करना, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करना, बट नेवर शोइंग ऑफ साइड व्हाटएवर यू नो ही यूज्ड टू डू फॉर पुअर पीपल एंड ऑल दैट। राजेश खन्ना के लिए मैं इससे कहना चाहूंगी क्योंकि ही वॉज लाइक अ वेरी गुड एडवाइजर टू मी एंड like a elderly brother I treated him. He used to come to my house. My mother always used to say the vyah ho jaye bas iske bhi shaadi ke liye uske piche padho ke ho jaye like us kisam ka rishta. Very good soul, very good hearted.
0: वैसे रीना रॉय ना बहुत शरारती थी, लेकिन वो कौन सा एक्टर था जो उनसे भी ज्यादा शरारती था?
1: कमल हसन था, वेरी वेरी नॉटी। मतलब ये कि हम लोग की वो सनम तेरी कसम जो फिल्म थी उसके अंदर बस के अंदर तो कभी किसी के बाल में च्युइंगम लगा देना, कभी कुछ कर देना, और फिर रात को रूम के बाहर कोई गेटअप बदल के आकर कोई और ही भूत बन के डराना एंड ऑल दैट, और अचानक दरवाजा खोलो तो एक निगरो आदमी दरवाजे बाइक में आया मिलने के लिए।
0: सोच के ही मजा आ रहा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirti.
1: Escava na puscava na sua cabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirti, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं
2: हाँ, किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं
2: रहे हैं।
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है।
3: असली
2: वाइफ से बात कर रहे हैं?
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
2: तो कोई बपौती है क्या?
3: नहीं, तमीज सीखिए।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी।
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे। आपका मुर्गा बन गया।
2: Oh my.
3: Okay. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: The OG Nuggin. आपको पता है कौन है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। रीना रॉय जी की करियर की माइलस्टोन फिल्म नागिन, ये फिल्म उनको कैसे मिली सुनिए एक बार एक टीवी शो में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नागिन एक्चुअली क्या हुआ, सारी हीरोइनों ने रिफ्यूज कर दिया था। दे वेंट टू रेखा जी, दे वेंट टू आशा पारेख, सो मेनी हीरोइंस उस जमाने की जो बड़ी हीरोइंस थी। तो देन मेरे पास आए क्योंकि मैं थोड़ा डांसिंग वांसिंग अच्छा कर लेती, तो मेरी माँ ने भी कहा है तू बंदिया नू मार रही है, क्यों कर रही है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा है और थोड़ा डिफरेंट है, मैं जरूर करूंगी। उस हिसाब से आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म।
0: और ये नागिन का रोल निभाते हुए उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई थी?
2: बिकॉज उस वक्त ग्लास के कॉन्टेक्ट लेंस होते थे, वी यूज टू नॉट हैव दोस सॉफ्ट वन। और नागिन का ये रोल था कि आई एम, जहां पर भी मैं खड़ी रहती थी आंधी तूफान, पत्ते उड़ रहे, मट्टी उड़ रही, एंड दैट यूज टू डैमेज माई आईज। फिर निकालो, फिर साफ करो आंख, फिर रियली वी वर्क वेरी हार्ड।
0: अच्छा, इस फिल्म के बाद ना लोग उनसे डरने लग गए थे?
1: हाँ, बहुत डरते थे, बहुत बहुत। नहीं, शूटिंग पे जाते थे पहले तो क्राउड यूं आता था, और आफ्टर नागिन जहाँ मैं गाड़ी से पैर निकाल के खड़ी रही, खट खट खट खट खट आ गई, ऐसा होता था,
0: आ गई अभी डस लेगी। चलिए इस फिल्म का ये सुपरहिट आइकॉनिक सॉन्ग सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रीना रॉय जब नई नई फिल्मों में आई थी ना, तो टॉम बॉय, सुपर एनर्जेटिक गूफ अप क्वीन थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इनके साथ ना एक और चीज हो जाती थी, सीरियस सिचुएशन में इनकी हंसी निकल जाती थी। अपनी पहली फिल्म के एक सीन शूट का उन्होंने क्या किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू में, सुनिए।
1: दैट वाज अ नई दुनिया नए लोग, कोई पहाड़ था बैंगलोर में, पूरा यूनिट सुबह से वो लोग चढ़े एंड आई थिंक सो 2:30 बजे तक दे वो देयर, कैमरा सेट एंड एवरीथिंग सेट, और हीरो और मैं हम ऐसे बैठे हुए, और मुझे बोला गया कि देखो ट्रेन, हम वो शॉट ले रहे हैं, ट्रेन जा रही है और आपका बैग है और हीरो का भी बैग है, अगर लाइन भूल भी गए तो कुछ बोलना मत, चाहे बैठे रहना दोनों, ट्रेन पीछे से जा रही, लाइक वी बोथ आर सिटिंग, अभी चलो ट्रेन आ रही आ रही आ रही, सब परेशान, अभी तक ट्रेन नहीं आई, और फाइनली ट्रेन आ गई, तो उसमें दो लाइन मुझे बोलनी थी, दो लाइन उन्होंने बोलनी थी, वो हीरो ने बोल दिया, जहाँ मेरा वक्त आया इतना ट्रेन ट्रेन ट्रेन तो मैं लाइनें भूल गई, फट से डायरेक्टर की दिखी लाइन भूल गई मैं, तो मैं हंस गई, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। डायरेक्टर ने अपना चाय का ग्लास फेंका और खाना नहीं खाया उन्होंने।
0: भाई ये अर्ली 70s की बात है, ये 15 साल की थी जब इनकी पहली फिल्म आई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मैं जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रीना रॉय जब छोटी थी तो कैसे थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में इस बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: स्कूल में आई वॉज वेरी नॉटी और मुझे वैसे भी बचपन से खेलने का बहुत शौक था। साइकिलिंग में करती थी और मम्मी ने साइकिल हमको दिला के नहीं दी थी तो वी यूज्ड टू पे मनी। हमारे एरिया में एक छोटा सा गैराज था, रेंट पर साइकिल में लेती थी जो पॉकेट एक्सपेंस मिलता था। और फिर पूरा दिन साइकिल चलाना और कभी कभी स्कूल बंक भी कर देना, मेरी दो तीन सहेलियों को एक को पीछे बिठाना एक को आगे बिठाना। और उसी गली में हमारी कुछ बड़े बड़े पुराने झाड़ थे पेरू के इमली के, वो सब चीजें मैं करती और पीछे माली पीछे भागना एंड ऑल दैट। बहुत बहुत नॉटी, लिटरली इट वाज लाइक आई हैड अ टीम ऑफ गर्ल्स, गुंडे टाइप, यू नो। आई थिंक सो माय मदर वाज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, आई गॉट इट फ्रॉम माय मदर साइड, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डेयरिंग थी, अब तो है नहीं। तो वो सारे जो उनकी क्वालिटीज है वो मुझ में है। जो भी उन हमारे रिश्तेदार आते तो दे से वी रिमेम्बर योर मदर व्हेन वी सी यू, यू नो।
0: That's so sweet. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और भाई ये चार लोग हमारी जिंदगी में जितना भूचाल मचा चुके हैं, अब उनको चुप कराने की बारी है। उनकी नहीं सुननी है यार। हमेशा हमें बोला जाता है कि अरे अरे ये चार लोग क्या कहेंगे बेटा, इस तरीके से हरकतें नहीं रखनी चाहिए अपनी। नहीं भाई, आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। आपकी चॉइसेस जरूरी नहीं है कि सामने वाले की चॉइसेस से अलाइन करे ही करे। एंड दिस इज नॉट व्हाट यू आर हियर टू लिव फॉर। मतलब दूसरों को प्लीज करना ही आपका मोटिव तो नहीं है ना जिंदगी का। कई बार हुआ है, बहुत सारी फिल्में ऐसी मुझे पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रेम की दीवानी हूं, तो इसके बारे में अगर मैं पब्लिकली बात करूं तो बहुत सारे लोग मुझे जज कर लेंगे। बट मैंने सोचा कि आज ये सारी जजमेंट को ना हम कहीं और भेजेंगे। इफ यू नो व्हाट आई मीन। फिलहाल इस जजमेंट फ्री सोच के साथ करते हैं इस शो की शुरुआत। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. La fiat la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर। सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: चलाया था 2200 रूपए का।
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार। आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
4: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची आहा। भाई अपने चॉइसेस को लेके वोकल होना काफी जरूरी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और जैसे हर इंसान डिफरेंट होता है वैसे उसकी चॉइसेस भी डिफरेंट होती हैं यार। अब ऐसे में अगर आपको कोई फिल्म पसंद आ रही है लेकिन आप ये सोच के बैठ चुके हैं कि यार अगर पब्लिकली इसकी बात कर दी तो शायद लोग मुझे जज करें, बट दिस इज अ थॉट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक टुडे। इसीलिए आई एम आस्किंग यू कि आपकी वो कौन सी फेवरेट वाली फिल्म है जो आप कभी भी देख सकते हैं एंड उसको लेके बाकी लोग जजमेंट भी बना सकते हैं आपके बारे में। सो आई वेंट डाउन टू माई ऑफिस पीप्स, सात्विक मेरे साथ है, बताओ दोस्त।
3: एनी डे बिल्लू द सलो गाय इरफान साहब, मेरे को वो मूवी बहुत अच्छी लगती है और इमोशनल बहुत है वो मूवी, तो लोग जज कर लेते हैं कि ये रोंदू सा है, बट यार जेन्युइनली मतलब वो मूवी, एक तो उस मूवी में ना जो वो पूरा नरेशन है कि एक सलो वाला बंदा, फिर उसका एक दोस्त है जो सेलिब्रिटी है, और अगर मैं टाइम में पीछे वापस जा पाता तो आई वुड हैव सेड इरफान के भाई तू जा साहिर खान के पास, वो तेरे को नहीं ठुकराएगा, वो बात करेगा तेरे से। दोज़ हू हैव वॉच्ड बिलू दे विल अंडरस्टैंड कि वो सलों वाला बंदा है और वो सुपरस्टार है और इन दोनों को दोबारा वापस से मिलने का मौका मिलता है। बुदबुदा गांव में शूटिंग होती है, मूवी के अंदर ही शूटिंग का सीन देखकर मुझे वैसे ही अलग से मजा आता है। सो इट्स अ फन मूवी, थोड़ा कॉमेडी भी है, इमोशनल भी है, सो बिल्लू एनी डे।
0: ऑल राइट, दैट वाज अ गुड रिकमेंडेशन। तो अगर आप सात्विक की बात से इत्तेफाक रखते हैं देन वेल एंड गुड। अपने चॉइसेस के बारे में इसी तरीके से आप भी थोड़ा वोकल होइए, बट एट द सेम टाइम अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके इसके साथ एक बार चैन से बैठिएगा। आपकी ये फीलिंग्स भी मेरे इस दोस्त की फीलिंग से अलाइन जरूर कर जाएंगी, और नहीं भी की तो क्या ही फर्क पड़ता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
4: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: आप लोगों के जजमेंट पे अपनी जिंदगी थोड़ी तय कर सकते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप और आज लोगों की जजमेंट तोड़ने की ठान रखी है मैंने, वो भी एंटरटेनमेंट के थ्रू, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान की चॉइस भी डिफरेंट होती है और आपकी चॉइस दूसरे से अलाइन हो जाए जरूरी तो नहीं ना। इसीलिए अगर आपको कोई फिल्म पसंद है तो ऐसा कई दफा हमारे दिमाग में आता है कि भाई अगर मैंने पब्लिकली इसके बारे में बात की तो शायद आई विल बी जज्ड, और बस इसीलिए आज मैं अपने ऑफिस कॉलीग्स से पूछ रही हूँ उनकी वैसी ही वाली फेवरेट फिल्म। गौरांग है मेरे साथ, हेलो दोस्त बताइए।
3: दैट मूवी इज 30 मार्क, हाँ प्लीज डोंट जज मी, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। एक तो ओजी जोड़ी अक्षय कुमार कैटरीना कैफ एंड उसके अलावा अक्षय खन्ना ओजी एक और, एंड देन जो उस मूवी में दिखाया गया ना कि कैसे एक एक्टर पागल होता है एक अवार्ड के लिए, एंड मतलब कैसे एक गांव पूरा पागल बन जाता है एक नकली शूट के लिए, एंड देन चोरी करना असली चोरी करने होते हैं उनमें, एंड देन मतलब वो उसमें बहुत सारे इमोशंस है उस मूवी में। गांव का प्यारा भी बन जाता है, उस गांव को बचा भी लेता है, उस गांव के बच्चों को बचा के ले आता है, एंड या इट्स बिना सर पैर की, बट बिना सर के आपको देखनी पड़ेगी, दिमाग के बिना क्रिटिक्स के आपको देखनी पड़ेगी, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, इट्स फन।
0: मुझे तो डेफिनेटली पसंद है 30 मार खान, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार कोशिश तो करके देखिए। बस मुद्दा ये है कि आपको अपना दिमाग साइड पे रखना होगा, क्योंकि भाई कुछ फिल्में मजे के लिए भी होती है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

Get Gunny. Only on Radio Mercy, New York. It's hot.

0: एक ऐसी सीरीज जिसकी जर्नी हर दूसरे इंसान के लिए डिफरेंट है।
1: ओटीटी एंड चिल।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन, आप मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड यस यू हर्ड इट राइट। बेसिकली एक ऐसी सीरीज है जिसको अगर आप एक पॉइंट पे शुरू करते हैं तो उसकी स्टोरी लाइन जिस तरीके से जाएगी, इट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस सीरीज की मल्टीपल एंडिंग्स है, ना ही इसकी कोई ऑल्टरनेटिव वर्जन्स है। इट इज जस्ट वन ब्रिलियंट ट्विस्ट जो सारी चीजों को बदल के रख देता है। एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज क्लाइडोस्कोप, विच इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, एंड इट इज अ हाइस्ट थ्रिलर। सो बेसिकली इस सीरीज की यूएसपी ये है दैट इसके जो एपिसोड्स हैं वो शफल करते हैं फॉर एवरी यूजर। यानी अगर आपने जब इस सीरीज की शुरुआत की और आपने देखा कि भाई रॉबरी का आफ्टरमैथ पहले दिखाया जा रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपके दोस्त ने इस सीरीज की शुरुआत की तो कुड बी दैट कहानी की शुरुआत उसके लिए उस हाइस्ट के एक साल पहले से हो। एंड वरी नॉट, भले ही शुरुआत आपकी अलग अलग तरीके से हुई है बट यू विल एंड ऑन द सेम पेज। इनफैक्ट मेरे जैसा इंसान तो इस सीरीज को रीवॉच करना चाहेगा कि भाई पहली बार जिस तरीके से इस सीरीज ने मुझे एंड तक पहुंचाया है, क्या सच में दूसरी बार में मैं दूसरे तरीके से उसके एंड तक पहुंचूंगी। एक बार फिर से याद दिला दूं, सीरीज का नाम है क्लाइडोस्कोप, विच इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtual la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's me. Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
1: मैं।
2: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: हैंड।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं। आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। बस यही वाली फीलिंग आ जाती है कुछ फिल्मों के बारे में सोच के, क्योंकि यार अगर हम आज के रेट में देखें या पहले भी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जो थी वो एक फिल्म की डेस्टिनी, उसका वर्थ डिसाइड करती थी। बट आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फिल्मों की बात कर रही हूँ जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया बट अल्टीमेट विनर्स बने लेटर ऑन। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मेरा नाम जोकर। अब बात करते हैं अंदाज अपना अपना की, जो 1994 में रिलीज हुई थी। वेल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवीज यू माइट हैव वॉच्ड, बट यू नो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इट डिड नॉट गेट अ गुड रिस्पॉन्स एट ऑल। मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था इस फिल्म के फेल होने का, बट द फैक्ट वॉज दैट पीपल डिडंट एक्सेप्ट दिस कॉमेडी। जस्ट इमेजिन यार, क्राइम मास्टर गोगो से लेकर आमिर और सलमान की केमिस्ट्री, उफ, हर बार बार बार इस फिल्म से अलग लेवल पे प्यार हो जाता है। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म जाने भी दो यारों, जो 1983 में रिलीज हुई थी। वेल, द मूवी स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट डार्क कॉमेडीज जो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई थी, एंड द रीजन वॉज वेरी सिंपल। उस वक्त इस फिल्म की टीम के पास उतने फंड्स नहीं थे कि वो इस फिल्म को प्रमोट कर सके, बट जब ये फिल्म टेलीविजन पे आई ना तब तो बवाल ही मच गया यार। इनफैक्ट 2012 में द मूवी वॉज री रिलीज, जिसको ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स भी मिला, हेंस प्रूफ दैट कॉन्टेंट इज द बाप। एनीवे, अभी मेरी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, कुछ देर में वापस आके बाकी की दो फिल्मों को डिस्कस करूंगी। टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

चैलेंज की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में आपको बता रही हूँ जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट वो अल्टीमेट विनर्स और उनको कल्ट स्टेटस भी मिला है. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मेरा नाम जोकर, उसके बाद हमने बात की अंदाज अपना अपना की, नंबर 3 पे वी टॉक्ड अबाउट जाने भी दो यारों, और अब नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट अग्निपथ, विजय थीनाना चौहान. वेल, ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी एंड इसका रीमेक भी आया ऋतिक रोशन के साथ, विच वॉज अ सक्सेस एट बॉक्स ऑफिस. लेकिन जब ओरिजिनल अग्निपथ 1990 में रिलीज हुई थी ना, इट फेल्ड, क्योंकि ऑडियंस को उस वक्त ये फिल्म काफी ज्यादा वायलेंट लगी एंड इट वॉज अहेड ऑफ दोज टाइम्स, इस वजह से वो इससे ज्यादा रिलेट नहीं कर पाए. बट मेनी ईयर्स लेटर दिस मूवी प्रूव्ड इट्स माइट and became a favorite of the audience. आज भी बिग बी को angry young man इसीलिए नहीं कहा जाता. खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे बात करते हैं फिल्म सूर्यवंशम की, जो 1999 में रिलीज हुई थी. एंड आज भले ही ये फिल्म हर दूसरे दिन आपको सेटमैक्स पे चलते हुए दिख जाए, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इट वॉज अ डिजास्टर. बट आज देखो किस लेवल पे हम इस फिल्म को पसंद करते हैं. इनफैक्ट खून वाली उल्टी के मीम्स भी तो कितने सारे बन चुके हैं. खैर, मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कोई एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे मिलूंगी. मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बॉक्स ऑफिस का चक्कर बाबू भैया।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब आपको तो पता ही होगा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस जो हैं वो किसी फिल्म का वर्थ डिसाइड करती हैं, राइट? बट आज पांच का

0: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना,
0: हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
2: Radio Mirchi, New York. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ये इंसान नहीं मानने वाला, अहमद खान की बात कर रही हूँ, क्योंकि सर जी ने शायद से कोरियोग्राफी छोड़ दी है और डायरेक्शन का ही सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी उनकी फिल्म आई थी वेलकम टू द जंगल, जो पता नहीं कैसे इतनी कमाई कर गई है। आई हेटेड द मूवी, बट उन्होंने एक बार फिर से ऑफिशियली कंफर्म किया है अपना अगला प्रोजेक्ट, विच इज गोइंग टू बी अ हाई कॉन्सेप्ट जॉम्बी कॉमेडी, जिसमें वो टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर का कॉम्बो लेकर आ रहे हैं। मूवी को प्रोड्यूस करेंगे फिरोज नाडियाडवाला, एंड इट इज गोइंग टू बी अ यूनिक फिल्म जो प्रॉमिस करेगी वाइल्ड मिक्स ऑफ लाफ आउट लाउड कॉमेडी एंड हाई ऑक्टेन एक्शन। बस हाथ जोड़ के अहमद खान से विनती करना चाहती हूँ कि वो नॉस्टैल्जिया वाली कॉमेडी मत लेकर आइएगा, क्योंकि उससे ऊपर उठने की अब बारी आ चुकी है। एंड टू शनाया कपूर, दीदी ये क्रोकोडाइल्स और ज़ॉम्बीज़, इनसे हटके भी कोई फिल्म करेंगी आप? द मच सेलिब्रेटेड सिंगर अरिजीत सिंह अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं। हाँ जी, कुछ टाइम पहले से ही इस चीज को लेकर काफी स्पेकुलेशंस चल रही थी, एंड नाउ न्यू रिपोर्ट्स सजेस्ट कि इस फिल्म में उनके ही साहबजादे अपना एक्टिंग डेब्यू भी करेंगे अलॉन्ग साइड नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शौरा। ऑल्दो इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको तो जरूर बताऊंगी यार। एक्टर प्रोड्यूसर नानी और राघव जुएल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म द पैराडाइज पोस्टपोन हो चुकी है। पहले ये फिल्म 21 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, बट नाउ रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट इट इज गोना हिट द थिएटर्स ऑन 24th ऑफ सितंबर। एक्चुअली इस फिल्म की अबाउट 30-35 डेज की शूटिंग ना बची हुई है, और ये सारी चीजें जैसे ही ऑन ट्रैक होंगी तो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन भी आ जाएगा। बाकी तो अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

दोस्तों, फ्राइडे की शाम में ना कुछ अलग ही जादू होता है। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ पूरा हफ्ता हम सब अपनी अपनी लाइफ के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बने होते हैं, मीटिंग्स, ईमेल्स, ट्रैफिक, डेडलाइंस, न जाने क्या क्या चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, फिर आता है फ्राइडे और वो बोलते हैं कि यार अब तो हीरो बन जाओ, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग का मूड ना बिल्कुल बॉलीवुड ओपनिंग सीन जैसा होता है। लाइट्स थोड़ी ब्राइटर लगती है, म्यूज़िक थोड़ा बेटर लगता है और प्लान्स चाहे बड़े हो या ना हो, एक्साइटमेंट फ्री में मिल ही जाती है यार। कोई मूवी नाइट प्लान कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ डिनर जा रहा है और कुछ लोग बस घर पहुंच के एसी और काउच के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। लेकिन यार सच्ची बताऊं ना तो बॉलीवुड में ना हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी परफेक्ट होने का वेट नहीं करना चाहिए, बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक चलाओ और सीन एंजॉय करो। तो चलिए आज की शाम शानदार में भी हम वही करेंगे, थोड़ी मस्ती, थोड़ा म्यूजिक और थोड़ा बॉलीवुड मैजिक। तो आप भी बताओ दोस्तों, अगर आपकी फ्राइडे नाइट एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका जॉनर क्या होता? कॉमेडी, रोमांस, एक्शन या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और इस फ्राइडे शाम को शानदार बनाने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milchi, burga.
1: Hello.
2: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से, बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23
2: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का?
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा हूँ
2: मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और थ्रो बैक थर्सडे पर आज बात हो रही है उस जोड़ी की जिन्होंने यार हर मूड को ना अपनी धुन दे दी। कभी सोचा है कि स्कूल के एनुअल डे से लेकर कॉलेज फेस्ट तक, शादी के संगीत नाइट से लेकर रोड ट्रिप्स तक, कितने बार हम एक ही म्यूजिकल जोड़ी के गाने पर नाच चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। जी हाँ, फिर एक दिन जब प्लेलिस्ट देखी ना तो बोले कि यार ये सारे गाने इन्हीं के थे, यही तो कमाल है। विशाल शेखर का पार्टी एंथम भी ऐसा कि डांस फ्लोर भर जाए और मेलेडी भी ऐसी कि हेडफोन्स लगाकर दुनिया भूल जाए। और शायद इसीलिए ना इनके गाने सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, मेमोरीज में भी रहते हैं। और सच कहूँ तो ऐसे कंपोजर्स के गाने जब भी लाइव सुनने मिलते हैं ना तो नॉस्टैल्जिया भी बीट पकड़ लेता है। तो आज थ्रोबैक थर्सडे पे आप भी बताइए कि ऐसा कौन सा विशाल शेखर पार्टी सॉन्ग है जो सुनते ही आपके भी पैर थिरकने लगते हैं। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस वीकेंड विशाल शेखर खुद सबको थिरकाने आने वाले हैं न्यू जर्सी में। तो दोस्तों मैं तो जा रही हूं, आप भी मुझे बताइए कि अगर आपको भी मौका मिले तो कौन सा गाना सुनेंगे उनका। और चलिए वॉल्यूम बढ़ा देते हैं क्योंकि 10 बहाने बजने वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आज न्यू जर्सी की तरफ देखो ना तो सब कुछ थोड़ा सॉफ्ट फोकस में लगता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और हाँ, कनाडा के वाइल्ड फायर्स की वजह से ये हल्का सा स्मोकी वेदर तो है, क्योंकि न्यू जर्सी में भी फॉग चल रहा है। लेकिन मुझे इससे और एक चीज़ याद आती है कि यार, एनआरआई लाइफ में ना वेदर सिर्फ वेदर नहीं होता, कॉन्वर्जेशन स्टार्टर भी होता है। मतलब देखिए, इंडिया अगर घर फोन लगाओ तो पहला सवाल अक्सर यही होता है कि वहाँ मौसम कैसा है, और फिर हम शुरू हो जाते हैं कि आज स्मोक है, कल बारिश है, पिछले हफ्ते इतनी गर्मी थी। जैसे कि ना हम सिर्फ वेदर नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी का अपडेट दे रहे हो, और शायद इसीलिए मौसम भी बदलते रहता है ताकि बातें कभी ख़त्म ना हो। वैसे दोस्तों, आप भी बताइए कि जब घर से कॉल आता है तो पहला सवाल ये होता है कि वेदर कैसा है या फिर

0: खाना खाया गया। डीएम मी ऑन इंस्टा आरजे वर्जी सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस हल्की सी हेजी शाम को बॉलीवुड के सुरों से थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Just bounce.

0: Milci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग,
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी।
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं,
1: हाँ, किससे बात कर रहे
2: हैं? मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें
2: नहीं,
1: कर
2: नकली
1: रहे हैं।
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
1: वो तो कोई बपौती है क्या?
2: नहीं नहीं, बात नहीं, तमीज सीखिए।
1: नहीं
2: तमीज,
1: नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए।
2: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाएं, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया।
1: Oh my.
2: Okay. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

शुक्र है, शुक्रवार आ चुका है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फ्राइडे ना दोस्तों सिर्फ वीक का एंड नहीं होता है, कभी कभी नए आइडियाज़ की बिगिनिंग भी होती है। क्योंकि जब दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना, तभी हम वो सवाल पूछ पाते हैं जो बिजी वीकेंड्स में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कि क्या मैं सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा हूँ, या क्या होम बाइंग का ये सही वक्त है, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग मॉर्गेज के बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर ये सवाल आपके भी माइंड में है तो आज का सेगमेंट बिल्कुल आपके लिए है। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है।

जहाँ हैंडलूम सारीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी. और दोस्तों, आपके फ़ोन में वो कौन सी ऐसी फ़ोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI. और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था. हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए. तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची फ्रेश माल।
1: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

इस गाने को आवाज दी है नील कमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नील कमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना वन।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ जोड़ियाँ ऐसी होती है ना जो सिर्फ गाने नहीं बनाते बल्कि यादें भी कंपोज करती है। जी हाँ, थ्रोबैक थर्सडे का सबसे खूबसूरत सरप्राइज पता है क्या है? एक पुराना गाना, उसके बस दो लाइन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त रिवाइंड हो गया हो। कॉलेज की कैंटीन, या पहली लॉन्ग ड्राइव, या पहला क्रश, या वो बारिश वाली शाम, सब एक ही पल में ना वापस आ जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज़ होता है कि यार, इन गानों के पीछे ना कितने बार एक ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने बस कैजुअली ये गाने बना दिए और दिल को छू दिए। जी हाँ, विशाल शेखर की धुनों की बात हो रही है। और ये तो उनकी खास बात है कि यार, एक तरफ तो फुल ऑन पार्टी ट्रैक्स बजाते हैं, फुल ऑन पार्टी ट्रैक्स कंपोज करते हैं, और उसी एल्बम में दूसरी तरफ बिल्कुल चुपचाप दिल को छू लेने वाले मेलोडीज भी बनाते हैं। हर जॉनर में एक अलग पहचान बनाई है इस जोड़ी ने। और वैसे अगर कभी मौका मिले कि इनके गाने लाइव सुनने मिले, तो यार उसकी यादें बहुत ही खूबसूरत होंगी, जो कि इस शनिवार को होने वाला है, जहां मैं जाने वाली हूँ विशाल शेखर के गाने लाइव सुनने के लिए। तो आप भी मुझे बताइए दोस्तों, अगर आप भी ये कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हो, तो ऐसा कौन सा रोमांटिक गाना है विशाल शेखर का जो आपके लाइफ का परमानेंट साउंड ट्रैक है? टेल मी ऑन इंस्टेड आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब एक ऐसी मेलोडी जो आज भी दिल के प्लेलिस्ट पे टॉप पर रहती है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: जी,
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात और सी।
0: अरे 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं, पहले रिव्यूज़ आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेक डाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं, और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं, कॉन्वर्जेशन भी क्रिएट करता है। वैसे आप ही बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले, या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं, एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La
1: virgola la murga. Milci, murga. Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's me. Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
1: मैं।
2: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: हैंड।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं। आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर, सर आपको सी डाल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची में मैंने मुर्गा बनाया, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना, अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बजता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी Honest at RJ Mirchi Siddhi SIDDHI। और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
2: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप ही है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिट्री सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। हिट गाना।
1: Radio Mirchi, New York. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलेडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई है, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज़ फ्रॉम रिया, जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज़ सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट ज़रूर होता है, जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Murga, murga. La virtua la murga. Mirci, murga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
2: आप किस से बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो.
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं,
2: रहे हैं.
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो तो कोई बपौती है क्या?
3: नहीं, तमीज सीखिए. नहीं,
2: तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Okay.
3: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। चमचादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन योर लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना ज़बरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये हमें हर इमोशन के लिए गाना दे ही देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बारिश हो तो अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग ड्राइव हो तो अलग, हार्ट ब्रेक के लिए अलग और सेलिब्रेशन के लिए अलग। और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी हम फीलिंग्स बाद में समझते हैं और बॉलीवुड पहले ही उसके लिए गाना बना चुका होता है। और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग ज़रूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? DM ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची विद ऑयोंतिका एंड डीजे रिचर्ड ओनली

ये वर्ल्ड कप हमें सिर्फ गोल्स नहीं गूज बम्प्स दे गया, लास्ट मिनट विनर्स, पेनल्टी हार्ट ब्रेक्स, VAR पे आर्ग्यूमेंट्स और सोशल मीडिया पे फैन वॉर्स, और अब बस एक मैच बाकी है। Hello and welcome to Club Mirchi World Cup Final Weekend. And this is your host Mirchi Oyontika. With me is DJ Richard. And World Cup Final Weekend Special finally begins. One more night to cover, guys.